मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है।

0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज सुनिए तिल की खेती के विषय में जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम तिल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी बुआई का सही समय जुलाई माह का दूसरा पखवाड़ा है, अतः आप

0: सही समय पर इसकी बुआई करें। खेत तैयार करते समय यह बात ध्यान दें कि खेत की मिट्टी मध्यम किस्म की हो और उसमें फालतू पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था हो। बरसात के मौसम में बुआई करते हैं, अतः जब खेत जोतने लायक हो तो 3-4 बार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। तिल की फसल को जिन उर्वरकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम 2 बार में प्रयोग करते हैं, एक तो खेत की तैयारी करते समय और दूसरा खड़ी फसल में पहली बार निराई गुड़ाई के बाद। खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक देते हैं उसे कोण में और जो उर्वरक खड़ी फसल में देते हैं उसे भूरख कर प्रयोग करते हैं। जहाँ तक उर्वरक की मात्रा का प्रश्न है तो उर्वरक की सही मात्रा तो मिट्टी की जांच कराने से ही मालूम होती है। उर्वरक देने का सबसे सही तरीका यही है और यदि मिट्टी की जांच न करा सकें तो तिल की फसल के लिए जो सामान्य मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई है उसे प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच कराए हैं तो उस अनुसार और यदि मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो तत्व के रूप में 6 किलोग्राम नत्रजन और 6 किलोग्राम फास्फोरस, कहने का मतलब ये कि लगभग 14 किलोग्राम यूरिया और 36 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खेत की तैयारी के समय और 14 किलोग्राम यूरिया पहली निकाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं। खेत की तैयारी हो जाने के बाद अच्छी प्रजाति वाला बीज लेकर फिर बुआई करते हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों में टाइप 4, टाइप 12, टाइप 10, टाइप 78, टाइप 32 और शेखर प्रमुख हैं। इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाए लेकर के बुआई करें। 1 हेक्टेयर में बुआई हेतु तो 3 से 4 किलोग्राम बीज लगता है, कहने का मतलब ये कि 1 बीघा जो कि 20 बिस्वा का होता है उसमें 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज से फैलने वाले रोगों से फसल को बचाने के लिए इसे थीरम दवा से शोधित करते हैं। 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम दवा पर्याप्त होती है। बीज शोधन के बाद उसकी बुआई करते हैं। बुआई हल के पीछे कोणों में और बीज कम गहराई पर बोने चाहिए। कोण से कोण की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। बरसात की फसल होने के कारण वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फसल में जब लगभग 25 से 30% फली लग जाए और खेत में नमी की कमी हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जहाँ तक तिल की फसल में निकाई की बात है तो इसमें पहली बार उस समय निकाई करते हैं जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, इससे पौधों को अधिक खुराक मिलती है तथा गुड़ाई हो जाने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है जिससे मिट्टी के जीवाणु सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। इसी निकाई के समय एक कार्य और करना चाहिए, जो पौधे ज़्यादा घने हो गए हों उन्हें उखाड़कर स्वस्थ पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर निर्धारित कर देनी चाहिए। पौधे जब 30 से 35 दिन के हो जाएं, तो एक बार एक और निकाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तिल की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तिल की खेती के विषय में जानकारी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

परमेश्वर की सत्य भक्ति से ही हमें सच्चाई को महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, वो हमारे प्रति कितने उदार हैं। जब हमें उनकी महानता का बोध होता है, तब अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और दूसरे जीवों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है।

0: जिस प्रभात में परमात्मा का स्मरण हो जाए वह प्रभात सुप्रभात हो जाती है। इन्हीं विचारों के साथ आज की आराधना अब संपन्न हुई। आज की आराधना के गायक कलाकार थे हरिओम शरण, सुरेश वाडेकर और प्रीति सागर। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज का विषय है कोरा कागज।
1: कागज पर कुछ लिखा हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। पढ़ने की महज एक शर्त है कि लिपि की जानकारी आपको होनी चाहिए। लिखने के लिए भी कुछ विचार चाहिए, कुछ भावनाएं चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए। पर जहां ये सब न हो वहां क्या लिखा जाए? आप समझते होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, पर आप विश्वास करें, आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ है जब आप कह उठते हैं, यह अवर्णनीय है, अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता। ऐसी अकथ कथाएं शब्दों के दायरे में आ नहीं सकती। शब्द यहां अभिव्यक्ति का सामर्थ्य खो देते हैं। जिस चकाचौंध के समक्ष शब्द गूंगे हो जाते हैं, अक्षर असमर्थ हो जाते हैं, उसके संबंध में कागज पर क्या लिखा जाए? कागज कोरा ही रह जाएगा। उसका कोरा रहना ही स्वाभाविक है। बिहारी की नायिका अपनी सखी से कहती है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। एक नायिका कृष्ण के पास जा रही है। उससे उसकी सखी कहती है, तुम कृष्ण के पास जा रही हो, इच्छा तो थी कि तुम्हें कुछ लिख कर देती, पर कागज पर लिखते नहीं बनता, कहने में भी लज्जा आती है। जाओ कन्हैया से तुम कुछ कह देना, जो तुम्हारा हृदय कहेगा वही मेरे हृदय की बात

0: सुना आपने, अनुभूति की तीव्रता पर शब्द कितने असमर्थ हो गए हैं। कागज कोरा का कोरा रह गया है। ऐसे ही जब हम व्यापक सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब उसकी अनुभूति शब्द के पकड़ के बाहर होती है। तभी तो कबीर कहते हैं कि देख के कह कहो, कहो सो को पतियाए। अर्थात मैं देखता हूं परमात्मा को, पर क्या कहूं? अगर कहूंगा तो कौन विश्वास करेगा? क्योंकि वे जो कहना चाहते हैं वह शब्दों के परे है। कबीर साहब के सामने शब्दों का ऐसा अकाल बहुधा पड़ता है। भाषा उनकी अनुभूति की व्यापकता को व्यक्त करने में असमर्थ ही रहती है। कागज कोरा का कोरा रह जाता है। एक ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के सिद्ध संत निवृत्तिनाथ के जीवन की है। उन्होंने एक दूसरे संत के पास पत्र भेजा। वे संत भी सिद्ध थे। पत्र के रूप में कोरा कागज भेजा गया था। कहते हैं उस संत ने कोरे कागज को पढ़ा, बड़े गौर से पढ़ा, उलट पलट कर पढ़ा, लिखा, कागज तो बस एक ही तरफ पढ़ा जा सकता है, पर कोरे कागज को चाहे आप जिस तरफ से भी पढ़िए। उस पत्र में न शब्द था, न अक्षर था, न रेखाएं थीं, केवल एक अजीब खालीपन था। कोई सामान्य व्यक्ति यदि उसे पढ़ते हुए देखता तो यही समझता कि इस पत्र को भेजने वाला पागल और इसे पढ़ने वाला उससे भी बड़ा पागल है। शायद वो ये नहीं समझ पाता कि जैसे इस जगत के कण कण में परमात्मा है, किंतु वो दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही इस कागज के खालीपन में भी एक उपलब्धि है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। उस संत ने निवृत्तिनाथ का कागज पढ़ लिया और विह्वल हो उठा। परम मगन हो बोल पड़ा कि निवृत्तिनाथ जी बड़े भाग्यशाली हैं, उन्होंने पा लिया, वह सब पा लिया जिसकी अनुभूति कागज पर लिखी नहीं जा सकती, जिसकी उपलब्धि कागज वहन नहीं कर सकता। वो खाली ही रह जाएगा, एकदम कोरा का कोरा, पर इस कोरे कागज की महिमा अपार है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था कोरा कागज। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में बरसात के मौसम में होने वाली समसामायिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी वाराणसी में समसामयिक बीमारियां, जो कि अभी सीजन जो चल रहा है वो बरसात का चल रहा है, तो बरसात में होने वाली बीमारियां, उनके बचाव, उनके लक्षण, इन्हीं चर्चाओं पे हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो इस समय जो सीजन है बरसात का, बरसात के सीजन में होता क्या है, इसको आम भाषा में आप देखेंगे हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार से हो, चाहे वो उल्टी दस्त से हो, चाहे वो डायरिया डिसेंट्री से हो, चाहे वो स्किन की डिजीज से हो। क्योंकि ये जो सीजन है, इस सीजन में जो बैक्टीरियाज होती हैं और जो वायरसेज होते हैं और जो फंगस होते हैं, उनको जो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, उस ह्यूमिडिटी की वजह से ग्रो करने का एक बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिलता है। उस फेवरेबल कंडीशन की वजह से वो ग्रो करते रहते हैं और उससे अपनी बीमारियों के लिए लोगों को ग्रसित करते रहते हैं। अगर बात करें हम बरसात के समय में होने वाली जो कॉमन डिजीजेज हैं, अगर हम इसको तीन चार सेक्शन में बांटे तो उसी तरीके से होगा। पहला होगा दूषित जल एवं भोजन से। जो भोजन होता है अगर वो दूषित है, उसमें मक्खी मच्छर या उसके जीवाश्म या अंडे इस तरीके से आते हैं, या आपका जो जल है उसमें सीवर का पानी या कोई भी किस तरीके का उसमें फिर वही बैक्टीरिया और वायरसेज वगैरह आते हैं, तो उनकी वजह से होने वाली बीमारियाँ, तो वो जो जनरली होती हैं वो डायरिया है, डिसेंट्री है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, टाइफाइड है। इस तरह की बीमारियां जो है ये जो दूषित खाने और भोजन की वजह से होती रहती है। दूसरा, इस समय जो है जगह जगह आपने देखेंगे आसपास अपने घर के आसपास गड्ढों में जल जमाव होता रहता है और उसमें मक्खी मच्छर जो है पैदा होने

0: होने लगते हैं। तो मच्छरों से जो होने वाली बीमारियां हैं वो कॉमन है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये इस तरीके की बीमारियां हैं जो आप हर बरसात के सीजन में आप देखेंगे कि लोगों को ग्रसित करते रहते हैं। तीसरी बात अगर हम आए तो स्किन के डिजीजेज, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारा ये चिपचिप जो बदन भी चिपचिप करता रहता है, और पता चलता है कि जो वाष्पीकरण नहीं हो पाता उसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन क्लियर नहीं होने की वजह से कई स्किन की डिजीजेज हो जाती है, जिनमें से अर्टिकेरिया है, खुजली है, घमौरियाँ हैं, फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा। मैं बात करूँ फंगल इन्फेक्शन की, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं आजकल फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से लोग क्या हो रहा है, गीले कपड़े, गीले बदन इस तरीके से रह रहे हैं, और जो फंगस है उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन होगा। अगर उस फंगस की हम बात करें तो आप भी देखेंगे कभी छोटा मोटा अगर खाना वाना छूट जाए या कहीं अचार अचार पड़ा रह जाए उस पर वाइट वाइट लग जाता है, बस वही फफूद है, वही फंगस है। उसी तरीके का फंगस टीनिया होता है, जो हम लोगों को अपने रिंगवर्म की तरह या फंगल की तरह डिजीज से परेशान करता है। अगर हम चौथी बात करें एयरबॉर्न डिजीजेज की, तो एयरबॉर्न डिजीजेज उसमें दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे आप सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और आपका टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट, ये सब बीमारियां जो है आपके अपर वाले गले की आपकी बीमारियां रहती हैं। इसके बाद लोअर थ्रोट की भी जो है इन्फेक्शन होते रहते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, न्यूमोनिया है, अस्थमा है, ये सब बीमारियां जो है इस एयरबॉर्न डिजीज की वजह से आपको इस गर्मी, इस सर्दियों में या इस बरसातों में आपको परेशान करता रहता है। तो बीमारियां कई हैं, हम आप बहुत ज़्यादा इनसे इन बीमारियों में ग्रसित रहते हैं। इस समय जो एक बहुत बड़ा कॉमन लोग हर घर में देखेंगे आप, बुखार, वायरल फीवर, वायरल डिजीजेज का ये सबसे प्रॉन कंडीशन है। वायरल डिजीजेज एक को हो गया, आपने हमने आपने सबने देखा था, अभी कोरोना भी है जैसे एक वायरल डिजीज की तरह थी और इन्फेक्शन हाईली इन्फेक्शियस थी, एक दूसरे को छूने से, पहनने से, टच करने से, कई तरीके की चीज़ों से फैल रहा था। उसी तरीके की ये कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, जो एक दूसरे से आप घर में देखेंगे, एक को फीवर हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुआ, दूसरे को भी जरा सा भी टच हुआ, जरा सा भी उसके कहीं ना कहीं उसके कपड़ों के, उसके सामान से कहीं भी टच हुआ, एयर से, उससे भी एक दूसरे को हो जा रहा है। तो इस तरीके की बीमारियां अगर हम बरसात को आम भाषा में बोले तो ये बीमारियों का घर का समय है, इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी बरती।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बरसात के मौसम में होने वाली समसामायिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6:40 हुए हैं। समय है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार

सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर और मिताली सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के बारे में आपको बता दें। खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से और उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर और दिन में 12:45 पर आज आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे अमरनाथ मिश्रा। और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शहनाई वादन। कलाकार होंगे विष्णु प्रसन्ना और साथी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर कलाकार होंगे सूबेदार यादव और साथी। इनके स्वर में लोकगीतों का आनंद आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिएगा भजन। कलाकार होंगी मीरा दास। और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में गजल। ग्रामीण बहनों के अपने कार्यक्रम अंगनेया में आज बहनों को हम सुनवाएंगे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव विषय पर प्रतिभा त्रिवेदी से बातचीत। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 1:15 से।

शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज हमारे युवा साथियों के लिए आकर्षण रहेगा आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही होगा शांभवी टंडन का काव्य पाठ। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे बरसात में पशुओं की बीमारियां और इनका इलाज विषय पर डॉक्टर आलोक पांडे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम मधुरिमा में सुबह 8:45 पर। आपके भेजे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन में 11 बजे से। दिन में 12 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में आज सुनिएगा बुंदेली गीत। गैर फिल्मी गीतों एवं गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर। और अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चम्पतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्ति पर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिव रूपेण नियुक्तः, तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पंजीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उप हिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस सुबह का टाइम है और चाय पे चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत से लेकर शाम की थकान मिटाने तक चाय हर मौके पर पसंद की जाती है और कई लोगों की तो आदत होती है कि वो खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय पी लेते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ये आदत शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सही खान पान के साथ साथ भोजन करने का समय और तरीका भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी चीजों का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो। इससे पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भोजन के तुरंत बाद चाय पीना भी कुछ हद तक इसी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा पैदा कर सकती है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। हमेशा खाना खाने के बाद हमारा शरीर भोजन को पचाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस दौरान पेट में पाचक रस सक्रिय रूप से काम करते हैं और अगर इसी समय चाय पी ली जाए तो उसमें मौजूद टैनिन और कैफीन पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भोजन को पूरी तरह पचाने में अधिक समय लग सकता है और गैस, अपच या पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है, खासतौर पर अगर आपने दाल, हरी

सब्जियां, बीन्स या आयरन युक्त भोजन किया हो तो उसके तुरंत बाद चाय पीने से शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता। लंबे समय तक ऐसा करने से आयरन की कमी और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। महिलाओं में ये जोखिम और अधिक माना जाता है क्योंकि उनमें आयरन की जरूरत अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, और जो लोग पहले से ही एसिडिटी, गैस या पेट संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए भोजन के तुरंत बाद चाय पीना स्थिति को और खराब कर सकता है। चाय में मौजूद कैफीन पेट में एसिड के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारे और बेचैनी महसूस हो सकती है। और अगर रात के खाने के तुरंत बाद चाय पी जाती है तो उसमें मौजूद कैफीन नींद को प्रभावित कर सकता है, जिससे सोने में परेशानी, बार बार नींद खुलना या नींद की गुणवत्ता खराब होने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये तो सबको ही पता होगा कि अच्छी नींद शरीर की रिकवरी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि खाने और चाय के बीच कम से कम 30 से 60 मिनट का अंतर जरूर रखना चाहिए। इससे शरीर को खाना पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। और अगर चाय पीने का मन हो तो खाने के काफी देर बाद या हल्के स्नैक्स के साथ इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है। तो बनारस, चाय एंजॉय करिए लेकिन इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, और सुबह एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल सी ट्रैक के साथ। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है मंगलवार और तारीख है 7 जुलाई। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित 2 दिवसीय काशी दौरे को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के संभावित और वैकल्पिक रूटों को पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए निगम प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखते हुए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर वीआईपी मार्गों की साफ सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। निगम का प्रयास है कि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान मार्गों पर कहीं भी धूल, गंदगी या कूड़ा दिखाई ना दे। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री के काफिले की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीमें सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों और छुट्टा पशुओं को पकड़कर अस्थायी शेल्टर होम भेज रही हैं। वहीं जिन मार्गों से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना प्रस्तावित है वहां प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे और स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित कर यातायात बाधित होने की संभावनाओं को कम किया जा रहा है। मार्ग प्रकाश विभाग को भी विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्ट्रीट लाइटों और हाई मास्ट लाइटों की जांच कर उन्हें पूरी तरह चालू रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त सड़क हिस्सों की मरम्मत, डिवाइडरों की पेंटिंग और प्रमुख मार्गों के सुंदरीकरण का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सभी जोनल अधिकारियों, सफाई निरीक्षकों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं और अगर किसी स्तर पर शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद शहर में जलजमाव की संभावित समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और जलकल विभाग की संयुक्त टीम विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हो गई है। अधिकारियों के समन्वित प्रयास से कई स्थानों पर गली पीट और सीवर चैम्बर की सफाई कर महज आधे घंटे के भीतर बरसात के पानी की निकासी सुनिश्चित की गई, जिससे आमजन और राहगीरों को बड़ी राहत मिली। नगर आयुक्त के निर्देश पर जलकल विभाग के नालों की स्थिति का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने गली पीटों में फंसे कूड़े करकट की सफाई शुरू की, जबकि अभियंत्रण विभाग ने जल भराव वाले निचले इलाकों में तत्काल पंप लगाने की व्यवस्था की। तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर गली पीटों के मुंह कचरे से बंद हो गए थे, जिससे पानी का बहाव प्रभावित हो रहा था। नगर निगम की टीम ने सारनाथ म्यूजियम रोड, दनियालपुर ईदगाह रोड सहित 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर तत्काल सफाई अभियान चलाकर बंद गली पीटों को खोला। वहीं काशी विद्यापीठ रोड स्थित सरस्वती नगर विकास भवन के सामने और सिगरा फातमान रोड समेत कई इलाकों में सीवर चैम्बर खोलकर पानी की निकासी कराई गई। आमतौर पर बारिश के दौरान जल भराव

की समस्या से जूझने वाला अंधरा पुल इस बार काफी हद तक जलमुक्त रहा। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर वहां पंप तैनात रखा गया। सिंधुरिया कॉलोनी, महेशपुर सहित अन्य निचले क्षेत्रों में भी पंप लगाकर पानी निकाला गया। साथ ही फुलवरिया, कोटवा और नई बस्ती में नालों की विशेष सफाई कराई गई। भविष्य में जल जमाव की समस्या को स्थायी रूप से कम करने के लिए नगर निगम ने सिगरा और गांधीनगर क्षेत्र में नई नालियों के निर्माण का निर्णय भी लिया। इससे इन क्षेत्रों में बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि तेज बारिश के कारण कुछ स्थानों पर अस्थायी जल जमाव हुआ था, लेकिन नगर निगम की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही समय में स्थिति सामान्य हो गई। उन्होंने कहा कि सीवर और बड़े नालों की नियमित सफाई के कारण इस बार शहर में कहीं भी लंबे समय तक पानी जमा रहने की नौबत नहीं आएगी। श्रावण मास में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कैथी स्थित प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइव दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु एलईडी स्क्रीन के माध्यम से गर्भगृह में विराजमान भगवान मार्कंडे महादेव के साक्षात दर्शन कर सकेंगे। गोस्वामी समिति के अध्यक्ष बजरंग गिरी के नेतृत्व में करीब 6.5 लाख रुपए की लागत से इस व्यवस्था को स्थापित किया गया। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दो बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिन पर गर्भगृह का सीधा प्रसारण होगा। इससे अधिक भीड़ होने की स्थिति में भी श्रद्धालु बिना धक्का मुक्की के भगवान के दर्शन कर सकेंगे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। भीड़ के कारण विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई लाइव दर्शन व्यवस्था से ऐसे श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी और मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन भी बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। समिति का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और सुगम दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे लंबी कतारों में इंतजार करने की समस्या भी काफी हद तक कम होगी और दर्शन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनेगी। इस व्यवस्था को सफल बनाने में गोस्वामी समिति के मंत्री और पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समिति ने उम्मीद जताई है कि श्रावण मास के दौरान ये व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले की अपेक्षा अधिक सुगमता से दर्शन का अवसर मिलेगा। तो अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। टडा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी के 7:00 बजकर
2: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो।

0: जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
0: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
1: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
2: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
3: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
4: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई

0: दिल्ली नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहिब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
1: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं अमरनाथ मिश्रा, राग है गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सितार वादन, राग था गुर्जरी तोड़ी, कलाकार थे अमरनाथ मिश्रा। इन्हीं से अब आइए सुनते हैं सितार पर भैरवी में धुन। एक बार फिर से आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्रा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थे अमरनाथ मिश्रा। राग था भैरवी में धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्रा। और इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और

0: मजबूती मिलेगी।
1: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचेह से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
3: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है।

0: भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल

0: निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcement expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
4: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical

0: Times of India headlines, Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it, while the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Zarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वहां होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मालियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलान मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम

0: के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जाम रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि ये वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है।

0: अब लिखता है मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
3: तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है?
4: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ।
5: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
4: पर कैसे?
5: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
3: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
5: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658
10: 0542227658।
11: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
12: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
13: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। स्वीकार कीजिए मेरा यानी आपकी अपनी सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वर्षा ऋतु का आगमन केवल मौसम का परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन के नवोन्मेष का उत्सव है। तपती धरती पर जब बादलों की पहली फुहार पड़ती है तो मिट्टी की सौंधी महक के साथ मन भी भीग उठता है। खेतों में हरियाली मुस्कुराने लगती है, नदियाँ नव जीवन से भर उठती हैं, वृक्षों की डालियाँ झूमने लगती हैं और वातावरण में एक अनूठी ताजगी खुल जाती है। हमारे फिल्मकारों, गीतकारों और संगीतकारों ने भी वर्षा के इन्हीं विविध रंगों को अपने गीतों में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ कालजयी फिल्मी गीत जो बरसों से श्रोताओं के मन में अपनी मधुरता बनाए हुए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस

अभी आपने सुना सन 1977 में आई फिल्म मंजिल का ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने। और आपको बताऊं, इसकी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहजता है। ऐसा लगता है मानो मुंबई की सड़कों पर केवल वर्षा ही नहीं, जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी उतर आई हों। यही तो संगीत का सौंदर्य है, जो साधारण क्षणों को भी असाधारण बना देता है। तो दोस्तों, वर्षा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति हर वर्ष अपने को नए सिरे से सजाती है। सूखे वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, सूनी धरती फिर से हरियाली ओढ़ लेती है। शायद इसी कारण वर्षा को आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक भी माना जाता है। अब प्रस्तुत है हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अमर गीत, जिसने प्रेम और वर्षा के संबंध को सदैव के लिए अमर कर दिया। सुनिए फिल्म श्री 420 का ये गीत।

अभी आपने सुना ये मनमोहक गीत जिसने दशकों से अपनी ताजगी बनाए रखी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं पड़ते, हर पीढ़ी उन्हें अपने ढंग से सुनती है और उनमें अपने जीवन की झलक खोज लेती है, और यही किसी श्रेष्ठ रचना की पहचान भी है। बारिश का एक रूप चंचल है तो दूसरा अत्यंत शांत। कभी वो झमाझम बरस कर धरती को तृप्त करती है तो कभी रिमझिम फुहारों के रूप में मन को धीरे धीरे भिगोती है। बरसती हुई बूंदों की लय में एक ऐसा संगीत छिपा होता है जिसे सुनने के लिए केवल कान ही नहीं, एक संवेदनशील मन भी चाहिए। महादेवी वर्मा ने प्रकृति को मनुष्य की आत्मीय सहचरी माना है। वर्षा के दिनों में यह आत्मीयता और गहरी हो जाती है। बादलों का आना, बिजली की क्षणिक चमक, दूर तक फैली हरियाली और भीगी मिट्टी की सुगंध, ये सब मिलकर जीवन के प्रति एक नया विश्वास जगाते हैं। और इसी नव जीवन, इसी उल्लास और प्रकृति के इसी उत्सव को अभिव्यक्त करता हमारा अगला गीत।

इस गीत में वर्षा की प्रतीक्षा, किसान के मन की व्याकुलता और बादलों के आगमन का जो चित्र उभरता है वो भारतीय जीवन की सच्ची अनुभूति है। हमारे कृषि प्रधान संस्कृति में वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि आशा, परिश्रम और समृद्धि का आधार है। यही कारण है कि पहली वर्षा की बूंद के साथ खेत ही नहीं, किसानों के चेहरे भी खिल उठते हैं। और अब प्रस्तुत है ऐसा ही एक कालजयी गीत जिसे लता मंगेशकर की मधुर आवाज ने अमर बना दिया है। इस गीत में वर्षा केवल प्रकृति नहीं मन की कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति बन जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म परख से ये गीत।

क्या ही मनोहारी रचना है। इस गीत की धुन, शब्द और भाव तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसमें वर्षा की रिमझिम, विरह की कोमल पीड़ा और मिलन की मधुर आशा एक साथ सजीव हो उठती है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और आकर्षण बनाए हुए है।

प्यारे दोस्तों, वर्षा हमें यही संदेश देती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। तपती दोपहरों में जब शीतल फुहारें आती हैं और कठिन समय के बाद सुखद क्षण भी अवश्य आते हैं, शायद इसी विश्वास के कारण सावन का हर बादल आशा का संदेश वाहक बन जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी से अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा, और अब शेष है आज की इस संगीतमय यात्रा का अंतिम पड़ाव। दोस्तों, लोकगीतों में सावन का अपना विशेष स्थान है। उत्तर भारत के अनेक अंचलों में आज भी वर्षा के दिनों में कजरी, झूला और मल्हार गाए जाते हैं। इन गीतों में केवल संगीत ही नहीं, परिवार, समाज और जीवन के सहज भाव भी झलकते हैं। विवाह के बाद पहली बार सावन आने पर बेटी का अपने मायके जाने का आग्रह भारतीय लोक संस्कृति का अत्यंत मार्मिक पक्ष रहा है। लोक जीवन की इन्हीं भावनाओं को स्वर देता आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

उन सहज भावनाओं से जुड़ जाता है जिनमें वर्षा केवल ऋतु नहीं अपनों से मिलने की आकांक्षा भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस संगीतमय यात्रा में हमने वर्षा के अनेक रूपों का अनुभव किया, रिमझिम फुहारों का उल्लास, प्रेम की मधुर अनुभूति, लोक जीवन की सादगी, किसान की आशा, विरह की कोमल पीड़ा और मिलन का आनंद। वर्षा हमें हर वर्ष ये विश्वास दिलाती है कि प्रकृति का चक्र निरंतर चलता रहता है। और इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम मधुरिमा अब यहीं संपन्न होता है। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में फिर भेंट होगी एक नए विषय, एक नई प्रस्तुति और मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। जिले की हलचल आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
3: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालयों में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडर

राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बेसबा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे।

0: के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ता है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। झांसी किले परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

0: से झांसी उत्तर प्रदेश का है पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिमा, पति का नाम विकास कुमार, निवासी ग्राम लोहराटी थाना कपसेठी वाराणसी। यह दिनांक 7 अप्रैल सन 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। आखिरी बार इन्हें हल्के रंग की ग्रे कलर की साड़ी में देखा गया था। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में यदि कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सीता निषाद, पिता का नाम विश्वनाथ निषाद, निवासी डोमरी पड़ाव कुष्ठ आश्रम रामनगर वाराणसी। ये दिनांक 10 अप्रैल सन 2025 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 23 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। आखिरी बार इन्हें सुनहरे रंग की लंबी फ्रॉक में देखा गया था। सीता निषाद के बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को या थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कीजिए। थाना श्योपुर जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहित तिवारी, पिता का नाम धनंजय तिवारी, निवासी ग्राम गोसी छपरा पोस्ट कुरिया थाना भेलदी जिला छपरा बिहार। ये दिनांक 19 अप्रैल सन 2025 से लापता हैं। रोहित तिवारी के बारे में जानकारी इस प्रकार है। उम्र 25 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 8 इंच, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें गुलाबी रंग की टी शर्ट और जीन्स पैंट में देखा गया था। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार विवेक सेठ, पिता का नाम स्वर्गीय राजेश सेठ, निवासी नहरपुरा लोहटिया कोतवाली वाराणसी। ये दिनांक 16 मार्च 2025 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 27 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, चेहरा गोल और रंग गोरा। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे

0: लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। हमारा पुरखलूस अदाब कबूल हो, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गजलों के मालिक जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने अपनी गजलों से अपना नाम, शहरे जिगर का नाम रोशन किया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। सामीन, कुछ शख्सियात का नाम रहती दुनिया तक तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता है, उन्हीं में ये शख्सियत जिगर साहब भी शामिल हैं। आज हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं जिगर मुरादाबादी की गजल गोई। आज के हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर मिज़बा अहमद सिद्दीकी। समाअत कीजिए ये तकरीर।
2: शेख मोहम्मद अली सिकंदर सिद्दीकी मुतखल्लिस बर जिगर मुरादाबादी 15 अप्रैल 1890 में पैदा हुए और 9 सितंबर 1960 में वफात पा गए, मगर इस कलील अरसे में जिगर मुरादाबादी जिगर सोजी व जिगर कावी करते हुए उर्दू गजल को वो मुकाम अता कर गए जिस पर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं गजल उर्दू शायरी की आबरू है। जिगर मुरादाबादी बुनियादी तौर पर गजल के एक वहबी और वजदानी शायर थे। मुझे उर्दू शेर व अदब के बाज नाकदीन की इस राय से काफ़ी हद तक इत्तेफाक है कि जिगर के यहाँ न तो अल्लामा इकबाल की तरह फ़िक्र व फ़लसफ़ा है और न ही गालिब की तरह तहदारी। कुल्लियात जिगर के दीबाचे में नामवर नक्काद प्रोफेसर आलम सुरूर लिखते हैं, जिगर के मिजाज में वो फ़लसफियाना गहराई, वो वहदत वहबी, वो संजीदा फ़िक्र नहीं है जो मसलन गालिब और इकबाल के कलाम में है। इसलिए जिगर को गालिब या इकबाल के मेयार पर परखना गलत होगा, मगर ये क्या कम है कि उनके यहाँ शहनशाह मुतग़ज़्ज़िलीन मीर तकी मीर का सा सोज़े जिगर और तड़प शामिल है। उन्होंने हकीम मोमिन खां की तरह गजल को गजल ही बनाए रखा, अल्लामा इकबाल की तरह न तो फिक्र व फलसफे का बोझ डाला और न ही गालिब की तरह तहदारी पैदा करके हमारी प्यारी सिन्फ़े सुखन गजल को शारहीन का मोहताज किया और न ही नक्कादान शेर व अदब के कलम के वो जौहर अफशानिया का जेरबार किया। जिगर मुरादाबादी की ज़्यादातर शायरी बिलखसूस गजलिया शायरी अज दिल खेजत बर दिल रेजत वाली शायरी है। जिगर का नज़रिया शायरी बहुत वाज़े व मुदल्लल है, साफ और सुलझा हुआ है। उनके यहाँ इश्क और हकीकत शायरी की जान है। वो शायरी में किसी किस्म की पेचीदगी या उलझाव पसंद नहीं करते। बाकियात फ़ानी की तकरीज में लिखते हैं, जब तक हकीकत मसाइल की सूरत में पेश की जाएंगी हमेशा शायरी नाकाम रहेगी, लेकिन इसको हुस्न व इश्क की चाशनी देकर बयान किया जाए तो दिल में उतर जाएगी। इस नज़रिए की तायद में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का यह शेर पेश किया जा सकता है, हर चंद हो मुशाहिदे हक़ी गुफ्तगु बनती नहीं है बात बादो सागर कहे बगैर। जिगर के यहाँ इश्क का हकीकी तसव्वुर और गजल की चाशनी अपनी पूरी तवानाई के साथ जलवागर है और उनकी रिंदी और सरमस्ती ने उनके इश्क और तगज़ुल को और भी दो आतिशा कर दिया है। जैसा कि मीर तकी मीर ने अपनी शायरी के बारे में दावा किया है, जो शेर हमारे सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। इसी तरह मामला जिगर के साथ हकी

0: मुनफरिद कारनामा, कोई ना कोई अनोखी आवाज और कोई बहुत अहम नक्श जरूर छोड़ता है, जिसके सबब वो अपनी अलग एक पहचान लगता है। इसकी आवाज हजारों आवाजों में पहचानी जाती है। इसका नक्श हर नक्श में अपनी अलग आबोताब रखता है और ये मामला उर्दू शायरी के अमीक मुताले से अच्छी तरह बयक नज़र वाज़े हो जाता है। इन सारी आवाज़ों में इश्क हकीकी की चाशनी से लबरेज और रिंदी और सरमस्ती से भरी एक आवाज़ है और ये आवाज़ है जिगर मुरादाबादी की और यही इनकी इनफरादियत है। इसी सिलसिले में एक मिसाल पेश करता हूँ कि उर्दू फारसी के तमाम ही शायरों ने रकीब को अपना दुश्मन माना है। मेरे नज़दीक भी एक हकीकत है मगर ये एक हकीकत है मगर जिगर मुरादाबादी ने रकीब को क्या अहमियत दी है सुनिए। वो हजार दुश्मन जहाँ सही, मुझे फिर भी गैर अजीज है। जिसे खाके पा तेरी छू गई, वो बड़ा भी हो तो बुरा नहीं। अब जिगर मुरादाबादी के कुलिया से चंद शेर गजलिया अशार के पेश खिदमत करने की इजाज़त चाहूँगा। फिर दिल से कसदे कूचे जाना किए हुए, रग रग में नेशे इश्क को पिन्हा किए हुए, फिर रज़ते ख्याल से घबरा रहा है दिल, हर वसते ख्याल को जिंदा किए हुए। फिर जी ये चाहता है कि बैठे रहे जिगर, उनकी नज़र से भी उन्हें पिन्हा किए हुए। अरसा हुआ कि रस्म मोहब्बत बदल गई, दामन से अब मामले चश्मे तर कहाँ। मैंने सिर्फ मजमून की तवालत के सबब अपने कलम को बाज रखा। आखिर में इस बात की भी वजाहत कर दूं कि हर बड़े शायर या अदीब को अपनी अहमियत व इफादियत का अंदाज़ा हो जाता है। हजरत जिगर साहब को भी यह अंदाज़ा पूरी तरह और बजा तौर पर हो गया था, तभी उन्होंने ये ज़रूल मसल शेर कहा जो अहले उर्दू अपने हर मोहसिन व मुरब्बी के साथ चश्मा कर देते हैं। जान कर मिन जुमले खासाने मै खाना मुझे, मुद्दतो रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे।
1: अभी आप ये तकरीर समाप्त कर रहे थे जिगर मुरादाबादी की गज़ल कोई। मुकर्रिर थे डॉक्टर मिसबा अहमद सिद्दीकी। आइए सामीन, अब अदब से जुड़ी हुई एक और सिंफ और बहुत खूबसूरत सिंफ, सिंफ़े शायरी की बात करते हैं। इसमें गज़ल, जिसको हर दौर में पसंद किया जाता रहा है, गज़ल हुस्न व इश्क की तर्जुमान है और अगर ये खुद कलाम शायर की शक्ल में हो तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और चार चांद लग जाते हैं। तो आइए कलाम शायर के तहत समात करते हैं डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी से उनका ताज़ा तरीन कलाम।
2: गज़ल के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। मतला समात फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि कब भला उसकी ज़बां लफ्ज़ अमां बोलती है, कब भला उसकी ज़बां लफ्ज़ अमां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फशां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फशां बोलती है। अपना अंजाम बता दे तो जिएगा फिर कौन। आखिरी शेर है, जमात फरमाएं कि जिस पे तारीकी ये शब रश्क किया करती थी, अब तो उस जुल्फ में भी कहकशां बोलती है। कब भला उसकी जबां लफ्ज़ अमां बोलती है, जब भी खुलती है तो बस शोला फिशां बोलती है। एक दूसरी गजल के चंद शेर समात फरमान। मतलब पेश खिदमत है कि गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। गैर तो साहिब किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। और जिसकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, जिनकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे। जिनकी राहों से हटाता हूँ मैं काटे वो लोग, अपने तलुओं में चुभा खार समझते हैं मुझे। और मुझको महदूद नज़र वाले हैं कहते बेसूद, और पारिक जो हैं शाहकार समझते हैं मुझे। और दरमियाँ अपने नहीं, ये शेर ख़ास तौर पर समात फरमाएंगे, दरमियाँ अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, दरमियाँ अपने नहीं रस्म दिलाजारी तक, लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे। लोग क्यों तेरा गिरफ्तार समझते हैं मुझे।

और मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे। मेरे साये से भी बचकर हैं गुजरते अहबाब, यानी गिरती हुई दीवार समझते हैं मुझे। आखिरी शेर मक्ते का शेर समाज फरमा ले कि मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा आए जावेद, मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा आए जावेद, जान का अपनी वो आजार समझते हैं मुझे। मैं समझता हूँ जिन्हें राहते जा आए जावेद, जान का अपनी वो आजार समझते हैं मुझे। गैर तो साहिबे किरदार समझते हैं मुझे, ये जो अपने हैं गुनाहगार समझते हैं मुझे। एक और गजल है, देखिए शायद पसंद आए। मतलब पेश खिदमत के जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अब के, यही है फिक्र झेली होंगी कैसे बारिशें अब के, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं, हम अपने घर की दीवारों को झुकता छोड़ आए हैं। और ये शेर खास तौर पर समाज फरमा लें कि चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या, चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आंखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं। चलो हम लौट तो जाएं मगर उनसे कहेंगे क्या कि जिन आंखों में सुंदर घर का सपना छोड़ आए हैं। जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं। जो याद आता है अपनों से सवा परदेश में हमको, हम अपने देश में एक ऐसा रिश्ता छोड़ आए हैं। आखिरी शेर इस गजल का कि हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपनी राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं। हमारी प्यास को क्या आजमाएंगे तेरे सागर, हम अपना राह तकता एक दरिया छोड़ आए हैं। जबानों पर सभी की अपना चर्चा छोड़ आए हैं, हम उसकी बज्म में एक ऐसा किस्सा छोड़ आए हैं। चंद शेर एक अलग से किस्म के खालिस गजल के शेर हैं और समाज फरमा लें कि देखिए बिल्कुल खालिस गजल के। मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें। और ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, ढूंढता कैसे उन आंखों में मोहब्बत की चमक, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें, मुझसे मिलते ही नजर उसने झुका ली आंखें। और ये शेर देखें खास तौर पे कि ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें। ख्वाब आएंगे कहाँ ऐसे सुलगते घर में, रात भर जाग के क्यों तुमने जला ली आंखें। वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, शेर देखें कि वो जो कहता था कि जी लेगा बिछड़ कर मुझसे, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें, उसने एक दिन में ही रो रो के सुजा ली आंखें। और दूर जाकर बड़ा नाजुक से शेर है कि दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, दूर जाकर भी न रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें। दूर जाकर भी ना रोया तो वो मर जाएगा, वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें। और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का कि जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। मक्ता समात फरमा लें कि हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें। हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें।
मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के

0: सुजा ली आंखें, दूर जाकर बिना रोया तो वो मर जाएगा। वक्त रुखसत तो है पत्थर की बना ली आंखें, और खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है। खीरगी अब जो मुकद्दर है तो हैरत क्या है, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें, क्यों भला आपने सूरज से लड़ा ली आंखें। और आखिरी शेर इस गजल का कि जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। जाने क्या कह दिया गुस्ताख निगाहों ने मेरी, उसने शर्मा के जो हाथों से छुपा ली आंखें। मक्ता समात फरमा लें कि हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें। हाँ कहीं पासे वफा उसने भी रखा जावेद, और कहीं मैंने भी दानिश्ता बचा ली आंखें। मैंने तो तुमसे मजाकन थी चुरा ली आंखें, तुमने तो वाकई रो रो के सुजा ली आंखें।
1: अभी आप डॉक्टर जावेद नसीमी के कलाम से महसूस हो रहे थे, और सामीन ये प्रोग्राम आ पहुंचा है इख्तिताम की जानिब। अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:51 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
1: 0542227658।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं सूबेदार यादव और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं झूमर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं सूबेदार यादव और साथी। इन्हीं के स्वर में अब आइए सुनते हैं खेमटा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खेमटा, स्वर था सूबेदार यादव और साथियों का। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराकत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराकत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जईबे बिना रे झूलनी, हम गवन मनाही जईबे।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में आज आपके लिए गीत पेश करेगी आपकी दोस्त सुषमा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं धरती फिल्म से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना धरती फिल्म से। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था शंकर जयकिशन का।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना गुमराह फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और संगीत था रवि का। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत। गीतकार नक्श लियालपुरी और संगीतकार खयाम।

अनवर और सुलक्षणा पंडित के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। नक्शले आलपुरी की रचना थी और संगीत था खयाम का। इस गीत के बाद आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में सिंदूर फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना लोफर फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और साथ हैं लता मंगेशकर। फिल्म का नाम प्यार का मौसम, संगीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

सितमगर फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत आर डी बर्मन का।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना सितमगर फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत था आरडी बर्वन का। कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संतोष आनंद के बोल और संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, संगीत केवल सुरों का संयोजन नहीं, बल्कि भावनाओं की वो मधुर अभिव्यक्ति है जो मन को स्पर्श करती है, स्मृतियों को सहेजती है और जीवन के विविध रंगों को स्वर प्रदान करती है। संगीत की यही विशेषता है कि वो सीमाओं की से परे जाकर पीढ़ियों को जोड़ती है और जीवन के प्रत्येक भाव को एक नई अनुभूति प्रदान करती है। आशा है आज के गीत आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। झनकार कार्यक्रम के गीतों को आज आपके लिए पेश किया आपकी दोस्त सुषमा ने। आपका स्नेह और साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से हमें ज़रूर अवगत कराइए। आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओ आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मानसून की आमद हमारे शहर यानी वाराणसी और आसपास में भी हो गई है, तो इस अवसर की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। गर्मी से और उमस से राहत तो मिली है। आज का ये प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7905519981। आज की फिल्में हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें भेजनी है। एक फरमाइश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक अपने संदेश भेज दें ताकि आपका नाम प्रोग्राम में जरूर शामिल हो सके। और एक बार ही संदेश भेजें, फिर इंतजार करें। फिल्मों के नाम आपको बता रहे हैं, आशा, द बर्निंग ट्रेन, जुदाई, दूसरा आदमी, अपने रंग हजार और धरती। आशा, द बर्निंग ट्रेन, जुदाई, दूसरा आदमी, अपने रंग हजार और धरती। नाम और जगह का नाम संक्षेप में और साफ साफ लिखें और एक बार ही संदेश भेजें। और खास तौर से शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और फिल्मों के नाम बताते ही आपके बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तो अभी भी बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत ही 4, 6, 10 तक संदेश हमें भेज दिया है, तो ये बार बार मैसेज करने का कुछ बात समझ में नहीं आती है। तो एक बार ही संदेश भेजें और इंतजार करें। एक संदेश में एक ही स्थान के श्रोताओं के नाम लिखें और हमारे केंद्र पर आपसे गुजारिश की किसी दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान का नाम न लिखें और श्रोता क्लबों के भी नाम न लिखें, वो हम शामिल नहीं करते। आपको बता दें कि कल कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में आप हमसे बातें कर सकते हैं सुबह 10:10 से 11 बजे के बीच। 2221052 और 2221050 ये नंबर हैं। 52 पर ही आरंभ में आप प्रयास करें। उस नंबर पर कभी कोई आवाज वगैरह न आने की दिक्कत होती है तभी 50 नंबर के फोन लिए जाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत। फिल्म है आशा।

फिल्म आशा का युगल गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फरमाइशें आप सबकी हैं। ये व्हाट्सएप संदेश है पकड़ी तर हनुमान मंदिर गहमर गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी है मां काली स्थान नौली गाजीपुर से।

जमानिया से हमारे श्रोता हैं गाजीपुर में, ये जगह है सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार ने। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी हैं छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से। सोन वर्षा खान पूर्व चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, आशीष राजभर, मनीष राजभर और आकर्ष राजभर। मगनपुर झारखंड के श्रोता हैं अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। छत्रपति संभाजीनगर से आपका संदेश आया है। परभणी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी। खरगोन सनावत से हैं अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू और सुरेश का संदेश दुल्हापुर से आया हुआ है। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती के श्रोता हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने और हीरामन शेंडे। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। संबलपुर कांकेर से हमें सुन रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति और रजस्वी यादव। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा हैं मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता। दतरंगी भाटा पारा से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। सावतपुर छत्तीसगढ़ से संदेश ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन का है। रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम और सतीश लच्छनपुर से। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता। राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी, भारती, दीपांजलि और अनुराग दीप, साथ में भगोली यादव और राम समुझी यादव। वलीदपुर मढ़ा मऊ से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा चोहलदा बागपत से। रामनगर से हैं सोनू अंसारी और लंबे बाबू। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी ने गीत के बोल लिखे हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत है। बाकी फिल्में हम आपको बता रहे हैं, जुदाई, दूसरा आदमी, अपने रंग हजार और धरती। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक संदेश भेज दें, आपका नाम शामिल हो जाए तो कार्यक्रम में बने रहें और दोबारा या बार बार संदेश न भेजें।

वादा करता हुआ ये गीत द बर्निंग ट्रेन से था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें। फरमाइशें आप सबकी हैं, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद और पूना राम देवांगन हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद यासीन अनजान, साहिबा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद हमें सुन रहे हैं गिरिडीह झारखंड से। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान, आप सभी हैं फूले नगर अंबिवली मुंबई महाराष्ट्र के श्रोता। मऊनाथ भंजन से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा मोहाली चंडीगढ़ से। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा की फरमाइश मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु और अर्णव आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से। ये फरमाइश आई है दिपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश की पिपरलोड सरगांव से। इसी गीत को सुनना चाहा गुरजीत सिंह, नगर पंचायत बिलसांडा, पीलीभीत से। बजड़िया वाराणसी के श्रोता हैं ऐनुल्हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और बद्रुद्दीन अंसारी। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका संदेश आया है। तेलंगाना भोंगीर के श्रोता हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने। मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी कुटवा वाराणसी से। कृष्णा कॉलोनी हांसी से इस गीत को सुनना चाहा सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू और राजू मिगलानी ने। हर नाम के साथ आपने ये छाते वाली इमोजी भेजी है तो वाकई इस मौसम में बहुत जरूरी है कि बारिश का लुत्फ तो लिया जाए लेकिन भींगने से थोड़ा सा बचा जाए। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी

पेश और दिपेश। मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज नूर महल मैसौल सीतामढ़ी के श्रोता हैं। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद मखीजा, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा और महेश कुमार कुकरेजा। तेलंगाना वारंगल के श्रोता हैं ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन और आयशा तबस्सुम साथ में।

शाह हैं, पद्मा टॉकीज नेपानगर से। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान और उनके साथियों की फरमाइश कस्बा कला शाहजहांपुर से आई हुई है। शिव मंदिर हकीकत पूरा के श्रोता है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। खरसवां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी की फरमाइश वाराणसी से। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, रिद्धन खुराना और तुलसी मस्किन और वीणा मस्किन। दिग्दर्शन और कविता गौण हमें सुन रहे हैं मेरठ कैंट से। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून मुरादाबाद दुल्हापुर से। विशाल मिश्रा बधवा बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर के हमारे श्रोता हैं। कलानौर से ये फरमाइश नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी की फरमाइश ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मोटाला महाराष्ट्र के श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। 26 बार संदेश आया है वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और मनोज का जेवरा हिसार से। तो एक बार ही संदेश भेजें तो भी इतने ही नाम आपके शामिल हो पाएंगे। मानसी कविता अनिल गौरव अरोड़ा हैं, नई दिल्ली मोती नगर से। थोड़ा सा अलग अलग ये बातें लिखेंगे तो नाम और पता सही सही जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं। डीटीएच पर आप हमें सुन रहे हैं और आपको प्रसारण अच्छा मिल रहा है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और वेब्स में भी हैं हमारी आवाज। बहुत दफे आपने लिखी है कि धीमी आती है, लेकिन यहां जो हमारा मॉनिटर है वहां पर तो लेवल सही मिलता है। ये गीत आप सुन रहे हैं अपनी ही फरमाइश पर, फिल्म है जुदाई, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़।

जी हाँ, और इस सुहाने मौसम में ये मधुर गीत आप तक पहुंच रहा था आप ही की फरमाइश पर। जुदाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत, प्यारेडाल का संगीत, फरमाइशें आप सबकी आई हुई हैं। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी और चांदनी कुमारी हैं, साथ में नंदनी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से। आपने लिखा आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए, आवाज यहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन ये बताएं कि गीत की आवाज या फिर अनाउंसमेंट की आवाज तो थोड़ा सा हमें आसानी होगी। अस्तुपुरा मऊ के श्रोता हैं जिनका ये संदेश आया है, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर और सुमन जायसवाल। ममता मारकंडेय, संजय मारकंडेय और बेबी किट्टू की फरमाइश बड़ा बम चौक खंडवा से आई हुई है। मोहम्मद नफीस, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद रजा और मोहम्मद अजीज हमें सुन रहे हैं रजानगर वाराणसी से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। कलाना राजस्थान के श्रोता हैं विक्रम कणवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कणवासरा। मागीराम सैनी और पूनम सैनी की फरमाइश धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से आई है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम, साथ में सद्दाम है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइमा शर्मा। अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया के श्रोता। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की फरमाइश। आपने एक दिन मेल पूछा था, उम्मीद है आप पत्र के लिए धन्यवाद में भी मेल जरूर आपने भेजा होगा या फिर भेज रहे होंगे। श्रोता, आपको बता दें कि कल कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश की रिकॉर्डिंग होगी और आप हमें फोन कर सकते हैं सुबह 10:10 से 222-10-52 पर, और इस नंबर पर यदि कोई दिक्कत आती है तो 222-10-50 पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ और वक्त इस समय 11:30 और 36 सेकंड का है।

कार्यक्रम में आपने अगर संदेश भेजा हुआ है तो इंतजार करें, प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहें, आपका नाम, आपकी फरमाइश जरूर शामिल होगी। दूसरा आदमी फिल्म का गीत बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का है संगीत।

दूसरा आदमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फरमाइशें आप सबकी आई हुई हैं, लाल माता सुदामा नगर अलराई झालावाड़ राजस्थान से हैं, हर्षिता रामेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फूंदी बाई बागरी। एडवोकेट वारिस अली खान इस्लामुन निशा शकील अहमद शहनाज खान और दानिश की फरमाइश संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। राजू जी मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं कि गीत की आवाज तो ठीक आ रही है, बहरहाल अभी देखिए कैसा है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा राघवेंद्र अरविंद जयपाल यादव इंद्रपाल यादव रागनी और रिया लोहेडी महोबा बुंदेलखंड से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। बीड शहर राजस्थान से नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे और जयश्री महत्री। काठगोदाम तेलंगाना के श्रोता हैं राजेश खन्ना सुनीता राज खन्ना भानु राज खन्ना और अमित खन्ना। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदुन सिद्दीकी जीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। गणोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह चौहान बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धनवंतरी नगर जबलपुर से हमें सुन रहे हैं अशोक सिंह सुनीता सिंह प्रीति सिंह और ऋतु सिंह। वल्ली मुंबई से नवाब खान इशरत जहां और अजहर खान साथ में अजीम खान। वहां तो मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो अपना ख्याल रखें। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से अलीम पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। अनाउंसर की आवाज हल्की बढ़ाई जाए, हालांकि यहां जो हमारा लेबल है मॉनिटर पर वो सही दिखता है। आजन जी रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की फरमाइश है टैगोर गार्डन ने दिल्ली से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं रिजवान खान आयशा सभी अनस और रेहान। मेरठ कैंट के श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौण। नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवेद हसन अब्बासी अनफ यशफ अनम अब्बासी सुहेल हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता है। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल पूनम जायसवाल विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल। विनोद मुड़त नेहा जैन दीपक और मयंक मुड़त हमें सुन रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल से, शुक्रिया आपका। कर्नाटक गुलबर्गा के श्रोता है मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल शबीर बनहट्टी आसिफ इकबाल और उनके दोस्त अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा खरगोन से आपका नाम पहले भी शामिल हुआ है। शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। उम्मीद है राम कुमार जी आपने अपना कॉल सुन लिया होगा। आपको फिर से बता दें तमाम श्रोताओं को कि बुधवार को जो रिकॉर्डिंग होती है कल भी होगी तो उसका प्रसारण दो हिस्सों में शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच उसका प्रसारण होता है। तो दोनों ही दिन आप प्रोग्राम सुने, आपका कॉल अगर रिकॉर्ड हुआ है तो जरूर शामिल होगा। सिद्धार्थनगर दरियापुर नांदेड़ से आरती छोटी बबली रूपाली और वंदना धूले मराठवाड़ा से आप सभी हैं। ये फरमाइश फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी की है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। किशन सबकाल आशा सबकाल सोनिया सबकाल और विशाल सबकाल हैं शास्त्री नगर बीड शहर के श्रोता। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से

मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा और जाहिद आसमा, जो भी नाम लिखें हम पूरे श्रोताओं पर यकीन करते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ नाम बिल्कुल बदल बदल के आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि भरोसा आप पे करना होता है हमें, तो बिल्कुल नाम सही लिखें, दुरुस्त लिखें और कोई भी बनावटी नाम न भेजें। सुल्तानपुर के श्रोता हैं यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। छत्तीसगढ़ महासमुद्र से कलीम, आसमा, सलीम और यूसुफ। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से आई है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी के श्रोता है नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से और हर्षिता लाम से। क्लीन भारत ग्रीन भारत हमें लिखकर भेजा है फरमाइश के साथ। पटियाली रोड गंज डंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, ऐजाद कुरैशी और अरिबा हबीबा ने। आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक और योगेश कुमार। जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार रकीबा, शाहीन तुबा अफरीन है। हालांकि आपने लिखा है प्रसार भारती के मोबाइल ऐप पर आपका प्रसारण कई दिनों से नहीं सुनाई दे रहा, नेटवर्क की कुछ समस्या होगी या फिर मोबाइल ऐप को अपडेट कर लें, क्योंकि ऐसी दिक्कत लगातार तो नहीं आनी चाहिए। बगबुड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने इस गीत को सुनना चाहा। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड के श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू। कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर और जयप्रकाश राहुल। और अब गीत फिल्म अपने रंग हजार से। लता मंगेशकर की आवाज, अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आपको ये जरूर कह दें कि एक और ऐप है जो प्रसार भारती का, वेव्स ओटीटी। अगर आपको कभी न्यूज ऑन AIR ऐप पर दिक्कत आती है तो वेव्स ओटीटी पर भी थोड़ा प्रयास करें और हमें बताएं, क्योंकि कई बार कुछ ऐप में कुछ इलाकों में दिक्कत आती है। तो वेव्स ओटीटी पर भी रेडियो के प्रसारण हैं और वहाँ आप वाराणसी केंद्र ट्यून करके यानी ढूंढ करके उस ऐप पर हमें सुने और फिर बताएं।

छठिया पोखर डुमराओं के श्रोता हैं फातिमा वली, डब्लू वली और आसमा वली, अब यही जो नाम आते हैं। देखिए, इस नाम के कुछ हमारे श्रोता हैं जो भेजते हैं, तो थोड़ी सी ये जो नामों में तब्दीली की जाती है तो लगता है कि कहीं से कुछ बात है। और कुछ बात और ख़ास बात यह है कि पटेल नगर मुगल सराय से इसी गाने की फरमाइश हमें शुरुआत में ही भेजी है सुनील कुमार सिंह ने।

इस गीत के लिए और भी बहुत सारी फरमाइशें हैं सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजी जाधव, संचित बयाल और प्रथमेश देशमुख की फरमाइश कालेगांव जाफराबाद से आई हुई है। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र के श्रोता हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े और प्रियाली हागोड़े। इस बार आपने अंग्रेजी में जो लिखा तो अच्छा किया, शुक्रिया आपका। गोयल जिन सनावत से मोहम्मद सूफियान, गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह हैं मोहाली तांगोरी पंजाब से। रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी की फरमाइश आई हुई है उदयपुर महाराणा प्रताप कॉलोनी से। भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं एमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी की फरमाइश गुजरात गांधीग्राम से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। कमर कॉलोनी बड़वा खरगोन से हमें सुन रहे हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पराशर और आराध्या की फरमाइश समस्तीपुर नरहन स्टेट से आई है, साथ में है लल्लू पंडित। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन जलगांव जंक्शन से।

चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर और मयंक गौहर हैं, विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के श्रोता। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर और अलकमा खत्री की फरमाइश वैष्णव कॉलोनी सनावत से आई हुई है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और फैजान खान है गंज डुंडवारा से, आपने संदेश भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान है सेक्टर 9 पंचकूला से। सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती की फरमाइश फाजिल का पंजाब से आई हुई है। गिरगांव महाराष्ट्र से हैं गजानन नादरे और मारोतराव पांचाल। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा है भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। बलराम सेन, इंदु सेन की फरमाइश छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से आई हुई है। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर, अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता, राजमुनिया गांव नारी पचदेवरा से। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी की फरमाइश गोविंदपुरा सीकर से आई है। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। स्टेशन रोड देवकली के राकत जौनपुर से हमें सुन रहे हैं डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव और कमलेश प्रजापति। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और हार्दिक बेरडी मध्य प्रदेश के श्रोता। अमित जंगेल, शकुन जंगेल और आरुषि और ओशिका की फरमाइश धमदा ग्राम सुखरी कला से आई हुई है। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है धरती, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गीत। बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश। और बहुत सारे श्रोताओं में सबसे पहले 11:02 पर ही संदेश भेजा और अब तक इंतजार किया पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी के हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने।

धरती फिल्म का युगल गीत आप सुन रहे थे। फरमाइशें आप सबकी हैं। जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत प्रवीण, सलीम जावेद और शमीम अख्तर अंसारी, कटरा मुबारकपुर से।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में धरती के गीत कार्यक्रम में सुनिए बुंदेली गीत कटिक। कलाकार हैं राजेश तिवारी।

धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राजेश तिवारी के स्वर को। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में एक और बुंदेली गीत, चौकड़िया।

धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बुंदेली गीत, और इस कार्यक्रम का आखिरी बुंदेली गीत है दिमे रियाई। कलाकार एक बार फिर से राजेश तिवारी।

धरती के गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुंदेली गीत। कलाकार थे राजेश तिवारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हौसलों की उड़ान कभी कम मत होने दो, सपनों की पहचान कभी गुम मत होने दो।
1: मेहनत से लिखो अपनी तकदीर हर बार, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी बार बार।
0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ मोनी।
1: और मैं हूँ स्नेह। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, और नहीं भी होंगे तो आ गए हैं ना हम आपके मूड को अच्छा करने और देने आपको कुछ रोचक जानकारियां। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
4: ओ, 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
7: दोस्तों, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति किसी भी समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं। इन धरोहरों को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे विलक्षण रचनाकार, विद्वान, भाषाविद और इतिहासकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हैं।
8: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7

0: और इतिहासकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हैं।
1: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं, बल्कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली और प्राकृत जैसी अनेक भाषाओं के गहन ज्ञाता थे। भाषा और संस्कृति पर उनकी अद्भुत पकड़ ने उन्हें अपने समय के विशिष्ट विद्वानों की श्रेणी में स्थापित किया था। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा, इतिहास, पुरातत्व और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया।
0: बिल्कुल, हिंदी साहित्य में उनका नाम, विशेष रूप से उनकी अमर कहानी उसने कहा था के कारण स्वर अक्षरों में अंकित है। यह कहानी हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, त्याग, वचनबद्धता और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। यही कारण है कि एक शताब्दी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कहानी पाठकों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाए हुए है और आज भी साहित्य के विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
1: गुलेरी जी का लेखन सरल और प्रभावशाली था। वो मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त साधन भी है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने अपने लेखन से ये सिद्ध किया है कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य के भीतर करुणा, संवेदना और कर्तव्य बोध का संचार करे।
0: बिल्कुल, आज जब हम तेजी से बदलते समय में आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्य हमें अपनी भाषा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि निरंतर अध्ययन, ज्ञान की खोज और सृजनशील सोच से व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: आइए, उनकी जयंती के अवसर पर हम हिंदी भाषा के सम्मान, उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन और ज्ञान के प्रसार का संकल्प लें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बात, ऊर्जा की बचत केवल बिजली का बिल कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और देश के सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उजाला योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को कम लागत में बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: उजाला योजना, जिसका पूरा नाम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल है, का उद्देश्य लोगों को सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है। एलईडी बल्ब सामान्य बल्बों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। ये कम बिजली की खपत करते हैं, अधिक रोशनी देते हैं और इनकी आयु भी काफी लंबी होती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आती है और ऊर्जा की बचत भी होती है।
0: इस योजना ने देश भर में करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचाया है। एलईडी बल्बों के व्यापक उपयोग से बिजली की मांग में कमी आई है, जिससे ऊर्जा संसाधनों पर दबाव कम होता है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। यह योजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं।
1: आज के समय में ऊर्जा संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घरों, कार्यालयों और संस्थानों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें, अनावश्यक बिजली की खपत से बचें और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अब वक्त हो चला है एक मनमोहक काव्य पाठ आपको सुनाने का, जिसको लेकर आई हैं शांभवी टंडन। तो आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी टंडन और आज मैं आप सभी को अपनी कविताएं सुनाने जा रही हूँ। कविता सुनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी लेखनी सशक्त हो, तो सुनिएगा कि लय मुक्त नहीं, काव्य को लयबद्ध कर दीजिए। लयमुक्त नहीं काव्य को लयबद्ध कर दीजिए, अलंकार से अलंकृत

कर उसे अब सच कर दीजिए। प्रभाव नहीं सटीक आघात पड़े उर पर, प्रभाव नहीं सटीक आघात पड़े उर पर, अपनी कलम से निकलने वाले शब्दों को इतना सशक्त कर दीजिए। तो जब सशक्त लेखनी की बात हुई है तो देश की बात होना भी बेहद ही जरूरी है। तो सुनिए कि धैर्य स्वयं में भर लूं मैं, धैर्य स्वयं में भर लूं मैं, संताप मन में धर लूं मैं, धैर्य स्वयं में भर लूं मैं, संताप मन में धर लूं मैं, नैनों की नीर छुपा लूं यूं, जीवन को कठिन बना लूं यूं, कि कष्टों में भी मुस्कान रहे, कष्टों में भी मुस्कान रहे, जीवन प्रभु वरदान रहे, रहे सुखी संसार सभी, हर मन पीड़ा से अनजान रहे। विदुषी बने हर बालिका, विदुषी बने हर बालिका, श्रेष्ठ वेदों का ज्ञान रहे, सत्य विजय ही धर्म विजय हो, पुरुषार्थ पर अभिमान रहे, नारी का सम्मान जहाँ हो, नारी का सम्मान जहाँ हो, माँ का धानी परिधान रहे, दान रघु के जैसा हो, मस्तक पर ज्ञान का मान रहे, सीता सा त्याग करी नारी तो, सीता सा त्याग करी नारी तो, दुर्गा सा उसमें स्वाभिमान रहे, दुर्गा सा उसमें स्वाभिमान रहे। काशी से हूं और काशी की बात नहीं कही तो मेरी कविताएं अधूरी रह जाती हैं। तो काशी पे है ये कविता कि नजर में बसा है वो रूप हो तुम, नजर में बसा है वो रूप हो तुम, बनारस की मीठी सी धूप हो तुम, नजर में बसा है वो रूप हो तुम, बनारस की मीठी सी धूप हो तुम, मैं बहता हुआ एक मुसाफिर आवारा, मैं बहता हुआ एक मुसाफिर आवारा, मुझे थाम लेता है वो 80 का किनारा, तुम ही से सुबह है तुम ही से है शाम, तुम ही से सुबह है तुम ही से है शाम, ज़बाँ पे चढ़ गया है अब इस शहर का नाम, दशाश्वमेध की वो आरती सलोनी, दशाश्वमेध की वो आरती सलोनी, जहाँ आके लगे सच हर एक अनहोनी, मणिकर्णिका या जीवन की दिलाए, मणिकर्णिका या जीवन की दिलाए, यहाँ हर एक मुसाफिर महाकाल का नाम गाए, सुबह की वो लाली जो घाटों पे छाई, सुबह की वो लाली जो घाटों पे छाई, बनारस ने अपनी ही महफिल सजाई, वो चाची की कचौड़ी का जायका पुराना, वो चाची की कचौड़ी का जायका पुराना, है राम भंडार जिसका दीवाना जमाना, वो ठंडी सी लस्सी की मीठी मलाई, वो ठंडी सी लस्सी की मीठी मलाई, चखे बिना जिसकी सुबह ना आई, है लगता जो मुंह में बनारस का पान, है लगता जो मुंह में बनारस का पान, तो महक उठता है मानो सारा जहान, शहनाई बजाते जहां खा बिस्मिल्ला, शहनाई बजाते जहां खा बिस्मिल्ला, कबीर और प्रेमचंद का है ये जिल्ला, है तुलसी के दोहे और रसखान की बानी, है तुलसी के दोहे और रसखान की बानी, राजन और साजन की सुरमय कहानी, गुणी ज्ञानियों का ये पावन नगर है, गुणी ज्ञानियों का ये पावन नगर है, ये विद्या का संगीत का ही शहर है, यहाँ मोक्ष मिलता है मिलती है मस्ती, यहाँ मोक्ष मिलता है मिलती है मस्ती, बड़ी बेफिक्री में बसती है ये बस्ती, ये महादेव की अपनी नगरी सयानी, ये महादेव की अपनी नगरी सयानी, है हर एक कंकर में शंकर की बानी, ना छूटेगा मुझसे कभी ये नजारा, ना छूटेगा मुझसे कभी ये नजारा, बनारस है सबका बड़ा ही दुलारा, बनारस है सबका बड़ा ही दुलारा। तो मेरी एक कविता है सड़क पर। सड़क पर आए दिन हम चलते हैं, तो बात करूं उस सड़क की मैं, जो शहर के शोर से थोड़ा बाहर अपनी चुप्पी में पड़ी रहती है। उसके देह पर दिन भर चलते रहते हैं लोग, पर रात होते ही वो अपने भीतर उतर जाती है, जैसे कोई साधु लंबे दिन के बाद ध्यान में बैठ गया हो। मैंने देखा है उसकी धूल में कितनी कथाएं बिखरी पड़ी हैं, एक रिक्शे वाले की थकान, एक छात्र की जल्दबाजी, एक औरत की चुप चिंता, जो बाजार से लौटते समय थैले से ज्यादा अपने घर का बोझ उठाए रहती है। सड़क इन सबको सुनती है पर बोलती नहीं, कभी कभी उस पर गिरती है बारिश और उसके देह पर छोटे छोटे जलचित्र बन जाते हैं।

तब वो लगती है जैसे रामकुमार के किसी चित्र की तरह। फीके रंग, लंबी काली रेखाएं और बीच में एक अनकहा अकेलापन। उसके किनारे एक चाय की दुकान है जहां हर शाम देश दुनिया बदलने की बातें होती हैं, पर सड़क जानती है इन बातों से ज्यादा सच्ची वो खामोशी है जिसमें लोग अपने अपने घर लौटते हैं। मैं सोचती हूँ कितने लोग इस पर चलते हुए अपना जीवन पार कर जाते हैं। किसी के लिए ये बस रास्ता है, किसी के लिए रोजी की डगर और किसी के लिए वो दूरी जो घर और परदेश के बीच खिंची है। पर सड़क इन सब के बीच सिर्फ बनी रहती है निष्पक्ष, थोड़ी उदास, थोड़ी धीर, जैसे अज्ञेय का कोई प्रश्न जिसका उत्तर कदमों की आहट में छिपा है, जैसे नागार्जुन की आंख जो आम आदमी की धूल में सच खोज लेती है, और जैसे रामकुमार का कैनवास जहां रंग कम है पर खाली जगहों में पूरा जीवन ठहरा हुआ है। इसलिए जब भी मैं उस सड़क से गुजरती हूं तो लगता है मैं कहीं जा नहीं रही, बल्कि किसी अनकही कहानी के भीतर धीरे धीरे समाए जा रही हूं। आजकल लोगों ने किताबें पढ़ना कम कर दिया है, किताबें दीमकों की भेंट चढ़ रही हैं। तो उस दीमक पे भी बात करते हैं। दीमक। किताबें खड़ी थी एक कतार में, किताबें खड़ी थी एक कतार में, शब्दों के पन्नों में गहरा इतिहास समेटे हुए। पर दीमक आई धीरे धीरे, चुपचाप, पन्नों की जड़ों में घुस गई, अक्षरों की आत्मा को चूसने लगी। आज की दुनिया में दीमक नाम बदल चुका है, अज्ञान, उदासीनता और चमकदार स्क्रीन की चमक। किताबें अब डरती हैं, उनके बीच कुछ खाली पन्ने हैं जिन्हें लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि समय की टकराहट और अल्प ध्यान अक्षरों की गहराई को सह नहीं पाती। वो दीमक सिर्फ कागज नहीं चाटती, वो सवालों को, सपनों को, मनुष्य की सोच को धीरे धीरे खा रही है। और फिर भी कुछ पन्ने बच गए हैं जो धूल से ढके हैं पर प्रकाश की तलाश में रहते हैं। किताबें कहती हैं हम मर नहीं रहे, हमें बस इंतजार है उस हाथ का जो हमें उठाए और फिर से देखे, सच में देखे। दीमक चाहे जितनी देर काट ले, ज्ञान की जड़ों में हमेशा एक बीज बचा रहता है और वही बीज कल को नई रोशनी देगा। एक कविता है कि कोई तुम्हें भी मिला था जाना, कोई तुम्हें भी मिला था जाना, तुम तो वैसे मत होना। कोई तुम्हें तो मिला था जाना, तुम तो वैसे मत होना, दिल में जो हो सच सच कहना, बिल्कुल झूठे मत होना, साथ जो दो तो पूरा देना, भीड़ के जैसे मत होना, मैंने जीवन माना तुमको, मौत सरीखे मत होना, तुम मेरा आधा हिस्सा हो, तुम मेरा आधा हिस्सा हो, तुम परछाई मत होना, तुम मेरी सारी दुनिया, तुम दुनिया से मत होना। स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन संगीत और कविताओं के माध्यम से किया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई कविता किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन संपूर्ण रूप से कर पाती है। पर फिर भी एक प्रयास है तो कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने भी एक गीत लिखा, मैंने भी एक गीत लिखा, गीत नहीं मानो प्रीत लिखा, मैंने भी एक गीत लिखा, गीत नहीं मानो प्रीत लिखा, भावों को शब्दों में जड़ मैंने तुझको अपना मनमीत लिखा। जब तुम पर लिखना कठिन लगा तो, जब तुम पर लिखना कठिन लगा तो हृदय के फाटक खोल दिए, तुम पर लिखते लिखते मानो प्रेम से नाते जोड़ दिए, तेरे आंचल में मैंने सपनों का संसार देखा, आँखों में मैंने मानो ममता का भंडार देखा, तेरे उड़ते उड़ते केश मुझे सुरताल नजर आते हैं, पायल कंगन बिछुआ मानो अलंकार बन जाते हैं, तुझसे लगन लग

0: लगा मुझको सबसे सुंदर बंध मिला, कि तुझसे लगन लगा मुझको सबसे सुंदर बंध मिला, तुझ पे लिखना शुरू किया तो सबसे अनुपम छंद मिला, वाणी वीणा लगे तुम्हारी, कि वाणी वीणा लगे तुम्हारी, अधर राग लगाए हैं तुझ पर कैसा गीत लिखूं, सब गीत तुझ में समाए हैं, तुझ पर कैसा गीत लिखूं, सब गीत तुझ में समाए हैं। तो हमने देश की बात की है, और देश में बेटियों की क्या स्थिति है सुनिएगा, कि देश में बेटी अगर बे आबरू ना शाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। देश में बेटी अगर बे आबरू ना शाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। बेटा हो पैदा तो घर में खूब ही खुशियां मने, कोसी जाए माए जो गलती से बेटी जन्मे, बेटे को दीपक कहें राजा कहें सम्मान दें, और बस चले तो बेटियों को गर्भ में ही मार दें, ना ये रोके ना ये टोके, ना ये रोके ना ये टोके मन की कुछ ना कर सके, काटे गए हैं पंख इनके ऊंची ये ना उड़ सके, जिसका पैदा होना ही अपशगुन ना पाक है, बेटियों की जिंदगी ये जिंदगी क्या खाक है। चूल्हा चौका चार दीवारी बचपन में सौंपे गए, ढेर सारी जिम्मेदारियां जबरन ही थोपे गए, अरे कैसे होते हैं वो लोग, अरे कैसे होते हैं वो लोग जो शायद चुप ही बैठते, देश में आधे पुरुष तो आधी हम हैं औरतें। देश में बेटी अगर बे आबरू ना शाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है।
1: दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको शांभवी टंडन की ये रचना पसंद आई होगी। अब कॉपी और कलम लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि अब बारी आ गई है अपने शब्दों के भंडार को और बढ़ाने की और उसमें नए शब्दों को जोड़ने की। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है निरूपण, जिसका अर्थ है किसी विषय का स्पष्ट, क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक वर्णन या विवेचन करना या व्याख्या करना। और अगर आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षक ने संविधान के मूल सिद्धांतों का निरूपण सरल भाषा में किया, या फिर इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति का सुंदर निरूपण किया गया है।
2: और इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है गाइल, जिसकी स्पेलिंग है GUILE, विच मीन्स क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर यूज टू ट्रिक और डिसीव समवन, और हिंदी में कहे तो छल या कपट। और आप इस वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार कर सकते हैं, द फॉक्स यूज गाइल टू स्केप फ्रॉम द हंटर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हिज सक्सेस केम थ्रू हार्ड वर्क नॉट गाइल। और इसी के साथ दोस्तों, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन बने हैं।
1: तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि भारत में डिजिटल क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म किस संस्था ने शुरू किया है, जिसका सही जवाब है प्रसार भारती।
2: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गुलू, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षता और ममताबाई वर्मा। वही रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंतीबाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से है श्यामाबाई रायकवार, और उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बहेल से साबिन खान, धर्मेंद्र प्रजापति खमहरिया छत्तीसगढ़ से, साहिल भारती बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, वहीं मुकेश कुमार

0: प्रजापति सिगरा वाराणसी से, रवि मौर समरौर आजमगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: और आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है कि भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है?
0: मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर देती हूँ। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? और इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टा आईडी @youthairvaranasi पर या फिर हमारी मेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भेज सकते हैं। जब तक आप अपने आंसर भेज रहे हैं, फिलहाल सुनिए, वक्त है इस गीत का।

0: बातें ही तो हैं जो हमें बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा देती हैं।
1: अच्छा स्नेह, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है?
0: हाँ, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है।
1: जैसे तुम्हें चॉकलेट पसंद है, वैसे ही हमारे साथियों को भी चॉकलेट जरूर पसंद होगी। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने चॉकलेट ना पसंद हो या कभी चॉकलेट खाई ना हो। और हम सबकी फेवरेट चॉकलेट के इतिहास, इसके सांस्कृतिक महत्व और लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड चॉकलेट डे भी मनाया जाता है। और दोस्तों, माना जाता है कि इसी दिन 1550 में यूरोप में चॉकलेट की शुरुआत हुई थी।
0: इसी के साथ दोस्तों, इंडियन सिनेमा के लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1896 में फ्रांस के मशहूर ल्यूमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार सिनेमा दिखाया था।
1: बिल्कुल। और आज ही के दिन वर्ष 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में दामोदर घाटी निगम DVC अस्तित्व में आई थी।
0: दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आज की रोजगार सूचना के बारे में, जो कि आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से।
1: UPPCS ने 2026 की परीक्षा के लिए कुल 500 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
0: इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: अगर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना बहुत ही जरूरी है।
0: आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
1: और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है इस गीत का।

0: जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल 10% बैटरी पर आ जाए तो आप तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर थक जाता है तब हम उसे आराम देने की बजाय और काम में लगा देते हैं। क्या ये सही है दोस्तों?
1: और कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो सपना पूरा करने की ताकत अपने आप मिल जाती है।
0: लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम काम के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ अच्छी आदतें अपनाइए। हर दिन कम से कम 30 मिनट टहले या व्यायाम करें, ताजे फल और हरी सब्जियां खाएं, पर्याप्त पानी पिए, समय पर भोजन करें और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें।
0: साथ ही दोस्तों नियमित स्वास्थ्य जांच भी कराते रहें। अगर शरीर में लगातार दर्द, बुखार, अत्यधिक थकान या कोई असामान्य बदलाव महसूस हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें दोस्तों।
1: समय पर डॉक्टर से सलाह लेना समझदारी है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही में स्वस्थ मन का निवास होता है।
0: जब हम स्वस्थ रहते हैं तब परिवार के साथ खुशियां बांट सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं दोस्तों।
1: तो आइए आज एक संकल्प लें, रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के नाम करेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन की हर खुशी का आनंद ले पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आपको आशा करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और इस बीच में कहीं आपने हमारा आज का क्यूओटीडी यानी क्वेश्चन ऑफ द डे मिस कर दिया है तो एक बार फिर सुन लीजिए। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर देती हूँ। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है?
0: इसी के साथ दोस्तों घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है और समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। तो कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय दो नई रेडियो साथी के संग।
1: मैं थी आपकी रेडियो साथी मोनी,
0: और मैं थी आपकी रेडियो साथी स्नेह।
1: दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित कर गए। श्री मोदी सम्मान मिलने पर आभार जतौले हमें।
2: मैं गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 111 विकास परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। इस मौका पर श्री योगी कहने कि इस समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब परिवारन के निःशुल्क राशन के सुविधा का लाभ मिल रहा बा।
3: आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। 10 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की व्यवस्था है। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, हर गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश में फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध करवाया है।
1: मुख्यमंत्री अजय सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपया के लागत के 99 परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर वहां के कहने की पछला 9 वर्ष में प्रदेश में विकास का नया कीर्तिमान बनल बा और लाख नौजवानन के रोजगार मिलल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काली लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तैयारियों का समीक्षा कैनी। वहां के कहने की आवे वाला 12 जुलाई के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 1 दिन में 35 करोड़ पौधा का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित कर जाए।
3: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर 11 जुलाई के अपन 7वां स्थापना दिवस मनाई। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नरेंद्र कोटवाल स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर हेमंत कुमार करेंगे। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण होगा। इसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों की एक पत्रिका का विमोचन भी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे गोरखपुर।
1: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में आज सवेरे भाई लेगो सड़क दुर्घटना में 3 जने का मौत हो गई। ये दुर्घटना दिल्ली दून हाईवे पर ओ समय भेल जब एगो कार टायर फटले के नाते बेकाबू होके फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। दौराला का क्षेत्राधिकारी दुर्घटना के बारे में

0: पूरा जानकारी देना है।
1: आज दिनांक 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे टीआरबी को सूचना मिलती है कि एक गाड़ी जो अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी है हाईवे पर। सूचना पर सभी संबंधित द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर 2 लोग मृत पाए गए और 2 लोग गंभीर अवस्था में घायल थे, जिनको तुरंत तत्काल इलाज हेतु भेजा गया। इलाज के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी आईसीयू में भर्ती है, जिसको इलाज अभी चल रहा है।
0: प्रदेश के पूर्वी जिलों में बीतल रतिया से बरखा के आसार बनल बा। गोरखपुर के सतही एकरे लगे के जिलन में काली रात से रुक रुक के हल्का है बूंदाबांदी का क्रम जारी बा। इलाकन में दिन में घाम निकले के सतही हल्का है बेरियो चलल, जैसे लोगों के भीषण गर्मी से राहत रहल। हालांकि पूरा दिन उनसों का असर बनल रहल। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे बरसात में पशुओं की बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर डॉक्टर आलोक पांडे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, साथ में सुबेदार यादव और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। रात्रि 8 बजे से सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के स्वर को। कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा शहनाई वादन। कलाकार होंगे विष्णु प्रसन्ना और साथी। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर और कल रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गिटार वादन। कलाकार होंगे निर्मल सैनी। और कल दोपहर 12:45 पर सुनिएगा एकल तबला वादन। कलाकार होंगे पंडित शारदा सहाय। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर और कल दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगे देवता दिन सरोज। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 11 बजे से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कलाकार होंगे हनुमान प्रसाद और कल रात्रि 8 बजे से कलाकार होंगी सलमा आगा। कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे मार्गदर्शन के अंतर्गत माइनिंग क्षेत्र में करियर के अवसर, इस विषय पर हेमंत कुमार से जानकारी की बातें, साथ में रोजगार सूचना, यूथ डायरी और अन्य रोचक जानकारियां। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे खरीब में सब्जियों का हानिकारक कीटों से बचाव, इस विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत, साथ में देवता दिन सरोज का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कल शाम 7 बजे से

0: सुनिएगा अंग्रेजी कार्यक्रम में पॉपुलेशन ग्रोथ ए चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी, इस विषय पर प्रोफेसर अलका सिंह से आकांक्षा सिंह की बातचीत। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंजुमन। कल रात्रि 10 बजे से सुनिएगा बीते रविवार को अप्रसारित रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म भाग मिल्खा भाग से। आवाजें हैं जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। आवाजें हैं तुषार जोशी और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। वैश्विक शान्ति स्थिरतायै भारत इण्डोनेशिया देशयोर रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आह्वानम्। जकार्तायाम् इण्डोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान्। भारत इण्डोनेशिया देशयोर मध्ये महत्वपूर्ण खनिज नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी कृषि अथ सामुद्रिक सुरक्षा इत्यादिषु विविध विषयेषु प्रमुख सन्धिपत्राणि परस्परं विनिमयीकृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बिन्तङ्ग् आदिपूर्ण इत्युपाधिना समलंकृतः। केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे एकस्मिन् सुरंग मार्ग निर्माण स्थले संजातेन दारुण पंकपातेन त्रयः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्व सूचनानुगुणम् आगामिषु त्रिषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विशेषतः गुजरात हरियाणा पंजाब अथ राजस्थानस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु प्रावृत्स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः तृतीये द्वन्द्वे भारतम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम नगरस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यस्य इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सहैव द्वयोः देशयोः व्यापक रणनीतिक सन्धेः कृते नूतन ऊर्जां प्रदातुं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं विचार विनिमयम् अकारि। द्वयोः राजनेत्रोः समुपस्थितौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज कृषि सामुद्रिक सहयोग नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी इत्यादिषु विविध क्षेत्रेषु अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। उभाभ्याम् नेतृभ्याम् जकार्ता नगरे भारतीय प्रबन्ध संस्थान बेंगलुरु इत्यस्य एकां नूतनां शाखां संस्थापयितुं सहमति च व्यक्तीकृता। सम्भाषणावधौ उभाभ्याम् भारत इण्डोनेशिया व्यापक रणनीतिक सन्धि सुदृढीकरणाय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनः संशोधिता। जकार्तायाम् राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यनेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् परस्परं वर्धमानेन विश्वासेन रक्षा सुरक्षा तथा सामुद्रिक क्षेत्रेषु अस्मदीय पारस्परिक सहयोगः सुदृढः जातः।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: इंडोनेशिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन बितंग आदिपूर्ण इति उपाधिना अलंकृतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य गौरवपूर्ण क्षणस्य कृते इण्डोनेशिया सर्वकारं प्रति स्वकीयां गभीरां कार्तज्ञभावं प्राकटयत्। तेन अयं प्रतिष्ठित पुरस्कारः भारतस्य सार्ध शत कोटि जनेभ्यः समर्पितः।
1: सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे

0: स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: इतः प्राग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपति प्रासादे इस्ताना मेर्देका इत्यत्र औपचारिक राजकीय सम्माननं प्राप्तवान्। अद्य अपराह्णे प्रधानमंत्री जकार्तायाम इंडोनेशिया संसदः संयुक्त सत्रं च संबोधितवान्।

0: संसदः संयुक्त सत्रं च सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री सविशेषं न्यगादीत् यत् वैश्विक आतंकवादस्य प्रतिकाराय उभे अपि राष्ट्रे संयुक्त कार्यसमूह तन्त्रस्य माध्यमेन अत्यन्तं निकटतया कार्यं कुरुतः।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: केरल राज्यस्य वायनाड जनपदे मेप्पाडी समीपस्थे कल्लाडी स्थानके अद्य वायनाड सुरंग मार्ग परियोजनायाः निर्माण स्थले संजातेन एकेन भीषणेन प्राणहारक पंकपातेन त्रयः जनाः मृत्युमुपगताः। वार्ताहरैः सह भाषमाणः मुख्यमंत्री वीडी सतीशनः इमां घटनाम् अत्यन्तं कष्टप्रदां दुर्भाग्यस्पदां च अवर्णयत्। तेन आरोपः कृतः यत् जनपद आपद प्रबंधन प्राधिकरणस्य समाह्वानानां पश्चादपि अधिकारिभिः दत्तानां निरंतर निर्देशानां पालने गंभीरा उपेक्षा विहिता। तेन अग्रे ज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थले सहायोद्धार कार्यार्थं राष्ट्रीय आपद उद्धार बलस्य दलानि राज्य आरक्षक बलं सहैव अग्निशमन उद्धार सेवा विभागः सद्यः नियोजिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य डुरंट कप टूर्नामेंट इत्यस्य जयचिह्नानाम् अनावरणम् अकरोत्। सहैव ध्वजं प्रदर्श्य तान् प्रेषितवती। सभां संबोधयन्ती असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे नूतनानि दलानि डुरंट कप, प्रेसिडेंट कप, शिमला ट्रॉफी इत्येतेभ्यः जयचिह्नेभ्यः प्रतिस्पर्धां करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां हरितक्षेत्रस्य संवर्धनाय एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपानां वपनस्य कस्यचित् महाभियानस्य विधिवत् शुभारम्भं विहितवान्। अस्मिन् मंगलावसरे संबोधयन् श्रीशाहः प्रतिपादितवान् यत् अयं वपन संकल्पः दिल्ली पर्यावरणस्य पर्यावरणतन्त्रस्य च आमूलं परिवर्तनाय कश्चन अत्यन्तं महत्वपूर्णः अभिनव प्रयासो वर्तते। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालयेन जूएल ओरम इत्यनेन जनजातीय विकासाय ज्ञानस्य नवान्वेषणस्य साक्ष्याधारित नीति निर्माणस्य च यंत्ररूपेण जनजातीय अनुसंधान संस्थानां सुदृढीकरणाय नूतन दृष्टिः उद्घाटिता वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य 20,000+ कृषि उद्यमिनः 20,00,000 कृषकान् सशक्तीकर्तुं प्रगति परियोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। निर्वाचनायोगेन बिहार गुजरात मध्यप्रदेश राज्यानां त्रिविधानसभासनानां उपनिर्वाचनेभ्यः अधिसूचना प्रख्यापिता। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैरन्त्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर गुजरात इत्येतयोः अन्येषु केषुचित् भागेषु तत्रैव हरियाणा पंजाब राजस्थान इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूला वर्तते। अद्य तटीय कर्णाटकस्य गुजरातस्य कोंकणस्य गोवा राज्यस्य मध्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञानेन विभागेन पूर्वानुमानितम्। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ नॉटिंगम इत्यस्य ट्रेंट ब्रिज इत्यत्र पंच स्पर्धानां श्रृंखलायाः तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतीय दलं इंग्लैंड दलं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज

पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम राम।
0: राम। गौरी बहन,
1: हाँ सुद्धू
0: अब
1: भैया,
0: भाई तुम्हें देख के लगत हो जौन हिल्ला किच्चा जौन हो पुतले यहाँ चली आई हूं ना, कि भाई असली किसानी तो वही करत हो।
1: अब भैया धान का रोपाई का सीजन चला था, तो वह धान का रोपाई करके आओ थे।
0: अरे भाई हमहूँ आ जाए देखा कुल धान जौन हो ना रोप के
1: हाँ
0: और निपटाई के हमहूँ किसानिया से आवत ही। बाकी हम कुछ पहले खलिया गए लली भाई, तो हम हाथ गोड़ धो ले ली। हम लगा तो कि तू सोझा चली आओ तू खेते से ना।
1: अब ये सब में बरसात भी होता है तो पानी का
0: हाँ हाँ
1: फायदा भी
0: रास्ते
1: मिल
0: में भी
1: जाए।
0: भाई हिल्ला किच्चा बा तब बढ़िया है भाई, ठीक है। देखा अपने पंचायती में अपने गांव घर का लोग रहा ना, कोनो थोड़ो क्यों कहे कि भाई कहाँ से जौन है माटी पोतले चली आई हो, है ना। और देखा हो ई जौन अपने फसल का खेती का जौन बात होले, एकरे साथ साथ ये जौन मौसम चलत हो ना, ये बाड़ी बगीचा का भी चलत हो, है ना।
1: बारी बगीचा चला था वो तो बिल्कुल सही कथन। और ये समय पेड़ पौधा जितना ज्यादा लगाए और आसानी से पकड़ भी लेता ये
0: यही
1: समय।
0: वजह से देखा भाई वन सप्ताह भी 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आज तक मनावल जाला। और आज भी देखा ओकर आखिरी दिन हो ना वन सप्ताह का। तो यही वजह से कि भाई आदमी एकरे प्रति जागरूक होए कि अब पेड़ पौधा का हमारे तोहरे जीवन में का महत्व हो, है ना। काहे से बिना पेड़ पौधा के हमार तोहार जीवन चाहे अपने पशु पक्षी भाई ना संभव नहीं बा ये धरती पर।
1: कोई का संभव नहीं है, ना मनुष्य का, ना चिड़िया, ना चिड़िया का, पेड़ पौधा का, कोई का जीवन नहीं संभव बिना पेड़
0: बिल्कुल
1: पौधा के।
0: है देखा, जैसे घड़ी में बैटरी लगा लेना, अब
1: हाँ
0: बैटरी
1: हाँ
0: खत्म हो जाले तब घड़ी बंद हो जाले,
1: हाँ
0: गाड़ी में पेट्रोल भराला तो हमहू तू देखा जैसे चलत है जो हवा लेकर के जेके ऑक्सीजन कहल जाला,
1: हाँ
0: ये कहाँ बनाला कबो पर विचार कैलू,
1: हाँ
0: कौनो फैक्ट्री में नहीं बनत ना।
1: पेड़ पौधा से ही निकलेला।
0: हाँ अब फैक्ट्री में बनाला भाई तो सिलेंडर में भर के जो कहीं कहीं देखा अस्पताल में या चिकित्सा संस्थान वगैरह में जो हो देवल जाला रोगी बदे के, बाकी हम तू चाहे जहाँ रही
1: जिन
0: है ना,
1: प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मौजूद
0: प्राकृतिक
1: है।
0: रूप से जो ऑक्सीजन मौजूद हो एक ही अपन पेड़ पौधा बनावाना, है ना। तो हम तक कहब कि श्रोता भैया लोग एकरे महत्व के समझा, बार बार यही वजह से ई बात चेतावल जाले कि पेड़ पौधा देखा अगर हमन ध्यान देवल जाइए उनकर ना तो वो हमारे जीवन के सुरक्षित रखी हैं।
1: और पेड़ पौधा सिर्फ ऑक्सीजन ही ना बल्कि लकड़ी, ईंधन, कपड़ा, जौन भी हम सब कपड़ा पहना थे, कपास हो, सब पेड़ पौधा से ही आता। फल फूल खाए पिए का जो भी चीज़ है, उत्पादन है, खाना
0: बिल्कुल
1: पीना, सब फल पेड़ पौधा से ही आता।
0: एकदम सही कहा तू भाई, इतनी निर्भरता पेड़ पौधा पर बा हमने का है देखा, इमारती जितनी लकड़ी है बढ़िया से बढ़िया देखा खिड़की दरवाजा लोग बनवावत हुआ है, बड़ेरी लगवावत हुआ, और कहाँ से आवत हो,
1: सब पेड़
0: पेड़
1: पौधा से ही
0: पौधा से
1: आता।
0: आवत हो। और पेड़ पौधा का इतना महत्व हो कि हे देखा जन्म से लेकर के आखिरी समय तक
1: लकड़ी
0: इनकर
1: पेड़
0: समझ
1: पौधा
0: ला
1: का
0: कि
1: उपयोग रहा था।
0: योगदान रहला उपयोग रहला। जैसे देखा लड़का पैदा होना ना जब कोनो पूजा पाठ करावा मूर पूजावा तो पंडित जी कहिए पहले कूसा लिया वा, कूसा चाहिए, कूसा कौन है चटाई चाहिए, कूसा के जना अंगूठी बना के तुम्हें तो पहनाए दही तब पूजा पाठ हुई है ना, शुरुआत हो जाले। और देखा जब जीवन का अंत होला ना तो वो देखा बांसे पर जौन हो टिकटी बनाए करके भैया लोग जौन अंतिम संस्कार होला भाई, उस समापन भी समझ ला कि पेड़ पौधा से होला।
1: मतलब शुरुआत भी पेड़ पौधा से होता और अंत भी पेड़ पौधा से ही
0: बिल्कुल।
1: होता।
0: अब बाकी जीवन में तो भाई जितना उपयोग बा तो हम तू जनता है या उपयोग करते है ना। तो भाई एकरे महत्व के श्रोता भैया लोग किसान भैया लोग समझा, और खेती के साथे साथे बाड़ी बगीचा पर भी ध्यान दा, काहे से कि विकास का दौर हो। और विकास के दौर में देखा जगह जगह देखा में आवत हो कि जहाँ सड़क गली जो चक रोड सकरा रहल ओके चौड़ा कैल जात हो, कत्तो कत्तो देखा नया सड़क भी बनावल जात।

0: था, तो वो रास्ते में जो पेड़ पौधा होते हुए उन्हें काटना जरूरी हो जाता है ना। तो जौन संख्या घटत हो ओके बराबर रख कर बदे के नया पेड़ पौधा लगावे के पड़ी।
1: हाँ, और इस समय बरसात का सीजन भी ऐसा चला था कि पौधा लगाई तो धूप भी बहुत ना, पानी भी पौधा के मिलत रहा था, तो
0: बिल्कुल
1: कम देखभाल से भी पौधा पकड़ लेता,
0: पकड़ लेता, बाकी तो देखभाल तो देखा भाई करही की पड़ी है ना,
1: जानवर से देखभाल ही सबसे देखभाल
0: जानवर से
1: करें
0: करे के
1: पड़ी।
0: पड़ी। जैसे देखा छोटवार लड़कन का देखभाल करे के होला ना, कि
1: हाँ
0: घाम लगा ताचरा से उन्हें तोप करके जानो तेज घाम कड़ेर घाम से बचावे को होला,
1: हाँ
0: वैसे अपने देखा नया पेड़ पौधा लगावा तो उन्हें जानो जाली से बसाटा से ओके घेर दे मजे के
1: हाँ
0: चारों तरफ से, कि कोनो छुटवार जानवर बकरी भैल भेड़ भैल ओके चरा न पावे, गैया चरा न पावे। और ओकरे साथ साथ जो है अगर खिली धूप हो तो देखा बरसाती घाम मशहूर हो है ना, काहे से कि आसमान एकदम साफ हो जाला
1: साफ हो जाला
0: जौन भी प्रदूषण
1: इतना
0: रहला।
1: तेज धूप लगे।
0: हाँ बहुत तेज धूप, तो नया पौधा अगर लगावा तो ओके थोड़ा सा ना हम तक कहब कि पुअरा से ओके ऊपर से तैसा ओके छाँह कह दा, चाहे जाली अगर रहे तो उसे छाँह कह दा, जैसे कि बहुत कड़ा धूप ओके ना लगा पावे घाम, तो वो पकड़ ली। आ ओकरे बाद जब वो अपने बले हो जाए ना,
1: हाँ
0: अरे भाई तब तो वो हम्मत वहाँ का वो पूरे गांव और समाज के बल दे
1: हाँ
0: है।
1: और ये समय तो चार रोड के किनारे किनारे अपने खेत के किनारे किनारे पेड़ पौधा लगाई तो बड़ा भैले पे हम सबके छाए दे के खेती किसानी करके कोई थक जाता आप उनके नीचे बैठ के आराम कर ले,
0: अरे
1: छाए ले
0: खूब
1: ले।
0: आराम करा ओमन, और देखा जब छहाए जाना कतो जा तावत रहा और छहाए जा ओकरे नीचे, तो फिर ओकर से बहरे ओकरे छाए से निकले का मन नहीं करत
1: हाँ
0: है ना,
1: एकदम
0: कि अब
1: शरीर
0: बैठल रहा
1: तरोताजा हो
0: है।
1: जाला।
0: हाँ इतना ठंडक मिला ले, इतनी शीतलता मिला ले, खास करके दिखा जोन ढेर छाह देव वाला पौधा हो,
1: इसे
0: पाकड़ हो,
1: पीपल
0: बरगद
1: होगल,
0: हो।
1: पाकड़
0: हाँ
1: होगल,
0: हाँ
1: बरगद होगल।
0: और ये सब कद भाई देखा इनके प्रति धार्मिक महत्व भी हो, पूजा पाठ का भी यही वजह से प्राविधान बनावल गयल हो कि भाई इन्हें नहाए के दो लोटिया जल दे, जो दो लोटा सब दहले जल तो कितना उन्हें समझ ला कि जल मिला ला पोषण भी हो जाए उसे है ना। यही वजह से अपने धर्म में भी ईवा कि हाँ पीपल के और बरगद के इस सब के पौधा जौन हो पेड़ जौन हो ना, इन्हें जौन हो दो लोटिया जल नहाइले के बाद देखा पूजा कल जाले इनकर। और कुछ ऐसा अवसर भी आवला, ऐसा त्यौहार भी आवला, जैसे सोमवारी अमावस्या भल देख लेता अपने जौन महिला बहन हैं ना,
1: हाँ
0: तो वो लोग का करी हैं कि जो उन्होंने नारा ले करके फेरी लगाए करके उनका देखा पूजा कर रही सब रही से है
1: हाँ
0: ना। तो यही वजह से कि वो पूजनी रहे कि उनके जो उन्होंने कोनो तरह के क्यों क्षति न पहुंचावे
1: वो
0: पावे
1: नुकसान न करे।
0: नुकसान करे है ना। तो हे देखा ये गौरी बहन हम तो देखा है बतियावे भुलाई गई कि भाई पंच भैया लोगों के संदेश भी सुनवावे के हो।
1: सुनवाद
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता भाई, फोन कॉल पर आधारित सजीव कार्यक्रम हेलो कृषि जगत में दिनांक 9 जुलाई 2026 गुरुवार के चिकित्सा विज्ञान गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर विनोद कुमार आपकी समस्या और समाधान बदे अपने स्टूडियो में उपस्थित रही हैं। अगर आपके गैस्ट्रोलॉजी विभाग से संबंधित कोनो समस्या हो तो ये फोन नंबर पर फोन करके आप उनसे अपन समस्या बता सकना और इस समस्या से मुक्ति पा सकना। फोन नंबर लिख लें 0542-222-1050 और दूसरा नंबर हो 0542-222-1052। समय याद रखें 9 जुलाई 2026 गुरुवार शाम 6:30 पर। गौरी बहन भाई देखा ये संदेश सुन लेना पंच भैया लोग। अब मौसम देखा बरसात का शुरू हो गया है, तो जैसे खेती बाड़ी बगीचा का हम नाव ले लिया है ना, वैसे अपन एक और अंग हो जौन हो कि अपने पशु चौआ है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ हम बदे के। भले खेती किसानी अब जौन हो

0: हर बैल से ना होत हो, बाकी दुधारू पशु हमन अब बड़ा संभार देना हमन के, है
1: हाँ,
0: ना।
1: आमदनी बदे भी और खाए पिए बदे भी, दूध दही बदे
0: बिल्कुल,
1: भी।
0: तो हम कही काहे न जनो, आज यही पर हम बतकही कैली डॉक्टर भैया देखा आए गए पाछे, है ना, कि ये जौन बरसात का मौसम चलत हो इमन पशुअन के जौन बीमारी होले ना, और एकर इलाज कैसे करे के चाहिए, कैसे बचावे के चाही, डॉक्टर आलोक पांडे भैया आए गए हुआ। तो हम तो कहती बतियाओ चलती, डॉक्टर भैया घुसू किया बा, और अब तू छुपा जा, पंच भैया लोगन के देखा सुनावे जा थी हे बत कही कि बरसात में अपने पशुअन के बीमारी जौन हो जाले ओकर इलाज कैसे करे के हो।
1: सुनवा ले।
0: पंचो देखा भाई, बरसात का मौसम शुरू हो गल हो, और ये मौसम में जौन आपन देखा हाथ गोड़ कहल जाना अब पशु चौवा भाई, दुधारू पशु हुआ, अब तो खेती हर बैल वाली रह नहीं गई, बाकी तो दुधारू पशुअन के जे भैया लोग रखले हुआ, तो उनकर विशेष रूप से का ध्यान रखे के चाहिए ई बरसात के मौसम में, जैसे कि वो रोग बीमारी से बचल रहे, यही विषय पर बतकही करे बदे के आज हमारे बीच आए गए हुआ पंचायती में डॉक्टर आलोक पांडे भैया, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ रामनगर वाराणसी में। डॉक्टर भैया आपका स्वागत हो।
2: धन्यवाद।
0: तो हम ये आपसे जानल चाहब कि ये मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई लोग होंगे
2: जी
0: ये का का ध्यान रखे, कौन कौन मुख्य रूप से बीमारी हो सकल है पशुओं के।
2: जी हाँ, बरसात का मौसम आदमियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी बड़ा ही खराब मौसम कहा जाता है,
0: जी
2: क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाती है इस मौसम में तो पशुपालक भाइयों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
0: जी
2: तो सबसे पहले तो मैं पशुपालक भाइयों को अपने बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी पशुपालक भाइयों का एक गला घोटू बीमारी का नाम आपने सुना होगा,
0: जी
2: तो वो टीका लग रहा है सघन तरीके से अपने बनारस मंडल में पूरा वो टीका लग रहा है, और भी जगह जहां पे ना लगा हो, तो पशुपालक भाई अगर जिनके भी पशु छूट गए हों तो वो टीका जरूर लगवा लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी हो जो बारिश के मौसम में ही होती है,
0: अच्छा
2: और ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाती है तो पशुपालकों को अपने पशुधन से नुकसान करना पड़ता है और उनका मृत्यु तक हो सकती है।
0: तो अगर इस समय से टीका लगवा ली है तो क्या ये रोग से पूरी तरह
2: जी जी
0: बचाव हो
2: पूरी तरह
0: जाएगी।
2: से बचाव हो जाएगा, अगर बस एक ही शर्त है इसमें, थोड़े से गाभिन पशु जो हैं 7-5 महीने के ऊपर उनको टीका नहीं लगता, जो छोटे बछिया बछवा हैं जिनकी उम्र 3 माह से कम है उनको टीका नहीं लग पाता है, बाकी पशुओं को अगर ये वैक्सीन लग गया, क्योंकि वैक्सीन है और ये बैक्टीरियल बीमारी है, तो पास्चुरेला मल्टोसिजा बैक्टीरिया का नाम है और इसका टीका उपलब्ध है, और टीका ही एकमात्र बचाव है इसका, अगर टीका लग जाएगा तो पशुपालक भाइयों को इस बीमारी से निजात मिल जाएगा।
0: अच्छा, जो उन गर्भवती पशु या बच्चा हुआ उनके
2: जी
0: बचाव में देखे क्या उपाय
2: उनको
0: करें।
2: बचाना है इस तरीके से कि जब भाई वो बच्चा दे लें तो उसके बाद उनको टीका लगवाइए, और अगर आपके एक पशु को भी ये हो जाता है तो आसपास के एक दो पशुओं में भी ये बीमारी फैल जाती है। बीमारी का लक्षण इस तरह से होता है, जैसा कि नाम इसका स्पष्ट है, गला घोटू, तो
0: जी
2: उसमें क्या होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में घुटन सी होने लगती है ना, तो
0: अच्छा
2: गले को घोटना गला घोटू, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक से घर्र घर्र घर्र घर्र की आवाज आती है, उनका बुखार काफी ज्यादा रहता है, चूंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा शरीर में पाए जाते हैं, तो जब ऐसा कुछ लक्षण आए, पशु खाना पीना बंद कर दे, तो तत्काल अपने नजदीक का चिकित्सालय पे जाकर अपने चिकित्सक से मिलें और उनको बताएं, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, प्राथमिक स्तर पे तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये गला घोटू है, और उसका अगर प्रॉपर उपचार किया जाता है, एंटीबायोटिक वगैरह की अच्छी डोज सुबह शाम लगवाई जाती है, तो आपका एनिमल रिकवर भी कर जाता है, बच भी जाता है।
0: अच्छा
2: और खासकर से ऐसे जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे हमारा बनारस, मिर्जापुर, और जो गंगा के किनारे वाला, जो भी नदी के किनारे वाले एरिया हैं, वहां पे सबसे पहले बीमारी दस्तक देती है, तो
0: अच्छा
2: वहां पे सबसे पहले टीका जिनका, जिन भाइयों, किसान भाइयों का घर नदी या इस तरह के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है, तो वो लोग गला घोटू से अपने पशुओं के बचाव हेतु टीका लगवाएं, और अगर ऐसा कोई लक्षण बच्चे हो जाता है तो तत्काल उसका इलाज करवाएं।
0: अगर मान लें कि आदमी कई ठे पशु रख ले बा,
2: जी जी
0: उमन एक पशु के ऐसा गला घोटू का लक्षण दिखाई पड़ला,
2: जी
0: तो क्या ओके बाकी पशुओं से अलग
2: जी
0: कर
2: जी
0: देवे के
2: जी जी
0: जरूरत
2: ये
0: है।
2: बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया है, जब भी इस तरह का लक्षण दिखे तो बीमार पशु को उससे सेग्रीगेट अलग कर देना चाहिए, और अलग करके उसका उपचार करना चाहिए, 3 से 5 दिन के उपचार के बाद वो पशु ठीक भी हो जाता है, अगर अर्ली पहली जल्दी उसका डायग्नोसिस हो गया तो, और बाकी पशुओं को इससे बचाया भी जा सकता है।
0: तो ये रोग डॉक्टर साहब कुछ खान पान में लापरवाही से या उनके आवास जहां रहने उनके गंदगी से हो जाला, कौन कारण से।
2: जी मेन तो वही है, बैक्टीरियल बीमारी है, जो बैक्टीरिया चूंकि वातावरण में रहते ही हैं, और अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है, जो पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया है, अगर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो अटैक कर देते हैं, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है, जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उसको

0: नहीं प्रतिरोध कर पाती है, और
1: जी
0: अगर टीका लगा होता है तो टीका एक प्रतिरोध का काम करता है, वो
1: जी
0: उससे बचाव कर लेता है। तो इस तरह से ये बीमारी फैलती है, और एक को हुआ दो को हुआ इस तरह से बड़ी तेजी से फैलती भी है। तो
1: अच्छा
0: इसी वजह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, अभी भी चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, चल रहा है, लगातार चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, जो किसान भाई छूट गए हैं वो जरूर लगवा लें इसका वैक्सीन
1: और कौन रोग
0: जी।
1: खतरनाक नहीं हो
0: और
1: सकला?
0: दूसरी बीमारी जो है, सबसे खराब बीमारी एक है, आप लोग जानते होंगे, हमारे किसान भाई सब लोग परेशान होंगे, वो है थनैला रोग,
1: जी
0: थनैली थनैला उसको बोलते हैं,
1: जी
0: जिसमें क्या होता है कि पशु के थन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको मैस्टाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक किसान गाय भैंस तभी तक रखता है जब तक उसे दूध मिलता है, उसे
1: जी
0: दूध ही
1: जी
0: उसका मेन आउटपुट है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर दूध नहीं मिला तो गाय या भैंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये बीमारी जो होती है थनों की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि थन में स्वेलिंग आ जाती है और दूध खराब हो जाता है, दूध
1: अच्छा
0: कभी फटता है, कभी दूध में लाल चकत्ते से लाल मतलब उसमें ब्लड मिक्स दूध आने लगता है, और थन में गांठ पड़ जाती है, थन कड़ा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर जल्दी इसको डायग्नोस, जितना देर करते जाएंगे उतना थन की स्थिति खराब होती जाएगी। तो
1: अच्छा
0: अर्ली डायग्नोसिस सबसे बेस्ट है, जितनी जल्दी पता चल जाए कि दूध खराब हो रहा है, हमारा दूध फट रहा है, दूध में छिछड़े पड़ रहे हैं, खुजली जैसा दूध निकल रहा है, तो तत्काल उसका इलाज कराया जाए। तो इससे किसानों को अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है तो इसमें आराम मिल जाता है और जल्दी ठीक भी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज, ये बहुत ही इकोनॉमिक लॉस करता है, क्योंकि इसकी
1: जी
0: एंटीबायोटिक बहुत महंगी आती हैं,
1: जी
0: और किसान का जैसे थनैला हो जाता है, दूध बंद खराब हो जाता है, दूध ही नहीं मिलेगा, तो बेचारा उसका काफी लॉस
1: भाई
0: होता
1: मुख्य
0: है।
1: उद्देश्य तो दूध
0: दूध
1: निकालना
0: ही है,
1: हो
0: और
1: जी।
0: भारत में सबसे ज्यादा किसानों को जो लॉस होता है वो मास्टाइटिस बीमारी से होता है। और बरसात के मौसम में, चूंकि मेन क्या होता है, गंदगी और वातावरण की जो मिट्टी है, कीचड़ है, गोबर है, उसकी गंदगी जहां पे रहती वहां पे ये, जब मौसम में आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, नमी ज्यादा हो जाती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जितने भी होते हैं, इन सबको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत अच्छा माध्यम वातावरण मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये बीमारी होती है। और सबसे खराब चीज ये है कि बैक्टीरियल मास्टाइटिस भी होती है, वायरल मास्टाइटिस भी होती है, और फंगल मास्टाइटिस भी होती है,
1: अच्छा
0: तीनों तरह की मास्टाइटिस होती है। तो अब किसानों को क्या करना चाहिए, जब भी बारिश का मौसम है तो कोशिश ये करना चाहिए कि इसका बचाव, थनैला का सबसे मुख्य चीज है बचाव। अगर आपने बचाव कर लिया, अपने पशु को सूखे में रखा, नीचे कीचड़ नहीं है, गोबर नहीं है, पेशाब नहीं है, साफ सुथरी जगह पे बांध रहे हैं, बरसात है तो उनको एक खूंटे पे ना बांध के 2-3 खूंटे पे अलग अलग जगह बांधिए, थन को गंदा मत होने दीजिए, तो इससे बचाव संभव है।
1: डॉक्टर साहब एक चीज देखा में आवला कि किसान भैया लोग जैसे अब दूध निकाल लेना
0: जी
1: तो दूध निकलने के कुछ देर बाद तक जो है थन का मुंह खुला लहला जो
0: हाँ,
1: छिमी
0: यही
1: के
0: यही
1: मन का
0: यही यही
1: सावधानी बरते
0: यही
1: हैं।
0: यही यही एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि दूध दुहने के बाद क्या होता है कि शुरू के 15-20 मिनट तक थनों का मुंह जो होता है खुला रहता है, और पशुओं की आदत होती है जैसे ही दूध निकाला जाता है पशु तुरंत बैठने की कोशिश करते हैं।
1: जी
0: तो जब पशु बैठेगा तो नीचे मिट्टी में कीचड़, बारिश का मौसम है, वहां पे गंदगी
1: संपर्क हो
0: है,
1: जाए उसे।
0: गंदगी है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस सब पड़े हुए हैं, तो वो उसके संपर्क में आएंगे और वो बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाएंगे थन के अंदर और जाकर के थनैला करेंगे। तो
1: जी
0: ऐसी कंडीशन में पशुपालकों को ये चाहिए कि जब भी दूध दुहे, दूध दुहने के बाद पशु को कुछ चारा वगैरह देने, जिससे वो 10-15 मिनट तक बैठे
1: बाहर
0: रहे,
1: जाए मन बैठा
0: हाँ
1: ना पावे।
0: बैठे न रहे, उसी में अपना वो खाना खाते रहे। और तीसरी चीज ये है कि दूध दुहने के बाद उसके थनों की अच्छी तरह से सफाई जरूर करें, बीटाडीन का सोल्यूशन लें, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला दें, 1:1 के रेशियो में मिला करके थनों में लगा दें, चारों थनों में लगा दें, तो उससे
1: अच्छा
0: क्या होगा कि
1: अच्छा
0: एंटीसेप्टिक लेयर बन जाएगी, और पशु अगर बैठता भी है तो वो एंटीसेप्टिक क्या करेगा कि बैक्टीरिया और उसको एंट्री को रोक देगा, और उनसे थनैला में काफी बचाव हो जाएगा। दूसरा, वेंटिलेशन, सूरज का प्रकाश और साफ सफाई, ये 3-4 चीजों को अगर पशुपालक भाई अपने व्यवस्था में ले आ ले, पशुपालन व्यवस्था में, तो थनैला रोग से काफी हद तक बचाव संभव है।
1: बरसात के मौसम में भाई देखा जाला कि हर तरफ नमी हो जाले तो इनके रहे के जो जगह हो वहां प्रयास करें कि जो थोड़ा बहुत धूप अगर निकलत हो तो वो धूप वहां तक पहुंच
0: धूप
1: पावे।
0: पहुंच जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो बैक्टीरिया वगैरह को काफी हद तक खत्म कर देती
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहब कि क्या भौतिक रूप से कभी कभी देखल में आवाला कि जैसे थन में जब दूध भर जाला तो
0: जी
1: वो भी फूल जाला
0: जी जी
1: तो अब आप बताओ तो कि थनैला में भी कुछ सूजन हो जाले एक
0: जी
1: अंतर के कैसे जान पाए।
0: अंतर ऐसा, जो थनैला में सूजन होगी तो उसमें दूध कम हो जाएगा,
1: अच्छा
0: दूध की कमी हो जाएगी, जब भी थनैला रोग होगा तो तुरंत ऑटोमेटिकली दूध का कम। अब वैसे जो भौतिक रूप से नॉर्मल, जैसे प्रेग्नेंसी का लास्ट महीना चल रहा है, बच्चा देने में 10-15 दिन रह गया है, तब उसमें सूजन होगी, तो वो थन

0: कड़ा नहीं रहेगा,
1: हाँ
0: मुलायम रहेगा, उसको दबाने पे दब जाएगा, लेकिन
1: अच्छा
0: दूध उसमें भरा होगा। और इसमें क्या होगा, दबाने पे कड़ापन महसूस होगा। अगर
1: हम्म,
0: थनैला है तो कड़ा रहेगा, और इस थनैला नहीं है तो कड़ा नहीं रहेगा और दूध साफ रहेगा इसमें। और बाकी जो दूसरी कंडीशन मास्टाइटिस वाली है उसमें कड़ा रहेगा और दूध साफ नहीं रहेगा, पतला रहेगा, पानी रहेगा, खुजा रहेगा, ब्लड भी हो सकता है, तरह तरह की कंडीशन में अलग अलग तरह के हो सकता है
1: जी।
0: ये।
1: तो इथनाइला के उपचार बदे भी क्या कोनो टीका
0: नहीं,
1: लगाते समय?
0: थनैला का चूंकि मैंने बताया कि बैक्टीरियल वायरल फंगी तीनों हो सकता है, तो इसका अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है, बस
1: जी
0: बचाव है। बाकी होने पे उसका लक्षण की पहचान करके जिस तरह का अभी थनैला है उस तरह की एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ और उसके सूजन वगैरह को कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब दवाइयाँ जब इस्तेमाल की जाती है तो इस रोग में कामयाबी मिल जाती है काफी हद तक। लेकिन फिर भी अगर किसी गाय को थनैला हो गया है तो उसके दूध में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है।
1: और अगर केवल लालच में मान ला के थोड़ा बहुत दूध निकाल के अगर बेच देते हो बाजार में, तो ओकर दुष्प्रभाव भी आदमी के ऊपर पड़ी?
0: दुष्प्रभाव पड़ता है, तो चूंकि हम उबाल के दूध पीते हैं, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि पका
1: जी
0: करके ऐसा कच्चा दूध नहीं पीते हैं, तो थोड़ा सा उससे कंट्रोल हो जाता है, ये दुष्प्रभाव पड़ता है, खासकर तब जब एंटीबायोटिक दवाइयाँ वगैरह लगती रहती हैं गाय
1: जी
0: को,
1: जी
0: तो वो दूध भी उनको नहीं देना चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि आजकल देखिए हर एंटीबायोटिक दवा पे लिखा रहता है कि विड्रॉवल पीरियड इतना दिन, मतलब 1 हफ्ते, 5 दिन, 7 दिन, तो उतने दिन तक वो दूध खासकर से छोटे बच्चों को नहीं देना
1: न
0: चाहिए
1: देना
0: या
1: चाहिए,
0: बीमार आदमियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक चली जाती है।
1: केहू के न पिए के चाहिए।
0: हाँ,
1: अगर एक
0: नहीं
1: तरह का
0: पीना
1: जो
0: चाहिए।
1: संक्रमण
0: जी
1: अगर
0: जी
1: समझ में
0: जी जी
1: आवत हो,
0: जी जी जी
1: तो हम तो किसान भैया लोग से कहा कि भाई देखा कोनो तरह का लालच न करें,
0: जी
1: पहले अपने पशु चौवा जो हो दुधारू उनके जान बचावे के कोशिश करें, और ओकरे बाद भाई जब स्वस्थ हो जाइए तो फिर दूध बेचा
0: जी जी जी
1: है।
0: जी जी
1: और कोने तरह का रोग हो सकन डॉक्टर
0: और
1: साहब?
0: देखिए दूसरा चीज, अभी एक अगात महीने बाद पशु जो गाभिन पशु है बच्चा देने के नजदीक होंगे, तो जब भी पशु ऐसे लक्षण आए तो गर्भित पशुओं का, तो वो बच्चा देने 1-2 महीने बाद बच्चा देंगे, तो जब ऐसी कंडीशन आए तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने जो गर्भित पशु हैं उनको थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दें, उनको बाड़े से थोड़ा अलग कर लें, क्योंकि बच्चा देने के नजदीक रहेंगे तो उनको थोड़ा अलग कर, उनका खान पान की व्यवस्था अलग से रखा जाए, उनको अच्छे पौष्टिक आहार दिया जाए, और साथ में इसलिए भी न बांधना चाहिए क्योंकि जिसके पास 4-5-6 पशु हैं तो गर्भित पशु को लड़ाई झगड़ा भी इन लोगों में होता रहता है, तो ऐसा ना हो कि उसको कुछ नुकसान हो।
1: हाँ, पशु
0: और
1: लड़ गई ना, आपस में गिर गई ना,
0: जी
1: तो
0: जी
1: नुकसान
0: जी
1: हो
0: नुकसान
1: जाए।
0: हो जाए। तीसरी चीज, उनको खान पीन के साथ साथ उनको कैल्शियम और फास्फोरस का लिक्विड जो होता है वो प्रॉपर मात्रा में दिया जाए, और बारिश के मौसम में कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो पशु हैं उनको तालाब उलाब का पानी ना पीने दिया जाए, क्योंकि इसमें एक लीवर फ्लूक बीमारी होती है जिसके होने की संभावना ज्यादा होती है पशुओं में, तो खासकर से हमारे जो भेड़ पालक या बकरी पालक जो चराने वाला काम करते हैं उनको बताना चाहूंगा कि वो लोग बरसात का या कहीं इकट्ठा हुआ पानी अपने पशुओं को ना पीने दें, जिससे कि उनको लीवर फ्लूक वाली बीमारी से वो लोग बचे रहे, उनके पशु।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब खुरपका मुंहपका रोग भी का
0: जी,
1: अपन?
0: खुरपका मुंहपका रोग है, लेकिन अभी इस मौसम में उनके होने की संभावना कम होती है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: सर्दियों में अक्सर होता है, तो अब बारिश के बाद अगला जो रहेगा वो खुरपका मुंहपका, जो कि एक वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होता है, और जितनी भी वायरल बीमारियां हैं उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ टीका ही है, तो उसका भी सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाता है वर्ष में 2 बार। तो जिन किसान भाइयों को अपने पशुओं को बचाना है या जब भी ये टीकाकरण प्रोग्राम चले तो उनको अपने पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए।
1: तो पंचो देखा भाई, डॉक्टर भैया डॉक्टर आलोक पांडे भैया जो उनकी पशु चिकित्सा अधिकारी हो रामनगर वाराणसी में, इतनी अच्छी जानकारी देना कि ये जो मौसम बरसात का हो तो इमन अपने पशुओं के कैसे बचाव करे के हो। डॉक्टर साहब एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता भैया देखा भाई, डॉक्टर भैया इतनी अच्छी जानकारी देना न कि अपने पशुओं के जो ने मौसम में हो वाली बीमारी है वो उसे कैसे बचा सका ना। डॉक्टर आलोक पांडे भैया से देखा ये बात कही कहली है, और हम कही कि नगद के बात कही जब हो गई तो ठे नगद के गौनाई भी हो जाए का गौरी बहन?
2: हाँ बिल्कुल सही कहा था।
1: तो हम कही सूबेदार यादव और उनके साथी भैया लोगों ने कही देखा गौनाई और पंच सुना आनंद लाई बरसात में।
2: सुनवा
3: हसी।

0: पंचों देखा ही सूबेदार यादव उनके साथी भैया लोग रहना है ये जो गौनई भइल ने तो है देखा एमन तकनीकी जो नई हो खेती किसानी का और नया बीज और समझ ला कि कुल बात एमन बता देना भाई एक संदेश भी रहला और मनोरंजन तो भाई आनंद तइबे कल तो ए गौरी बहिन हम कही कि आज के कार्यक्रम तो हो गए अब जौन हो चलत चलावत काली के जौन कार्यक्रम होके बता दा तो हम बता दी
1: बताएं
0: कि सवेरे 6:05 पर काल जोन खेती की बातें कार्यक्रम हुई ना कि करेला के खेती विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह और सांझी के 6:30 पर जोन कृषि जगत कार्यक्रम होता हो एमन खरीफ में सब्जियन के जोन हानिकारक कीट होना ना इनसे कैसे बचावे के हो यही विषय पर बात कही हुई डॉक्टर कुलदीप सिंह से है ना तो हम कहे एक साथ ही चला के बेला हो तो पंच भैया लोगों से आज्ञा लेवल जाए तो पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। आवाजें हैं रिजी सिंह और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की, गीतकार हैं रिशाद कामिल, और संगीत है ए आर रहमान का।

गीत है फिल्म तमाशा से। आवाजें हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे

डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है संक्रामक रोगों से बचाओ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर संजय चौरसिया। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 9 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी रहे तू
2: जरा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
1: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
0: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
1: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून

0: व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

0: पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ सम्पन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5,00,000 रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
2: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, 1 रूम लड़कियों के लिए, 1 रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5,00,000 रूपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
3: 20,00,000 रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
1: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेन्स यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।
1: बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है, इसमें जो रिदम है वो।
2: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
3: मोहब्बत है ये जी, हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

रसरंग कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। आवाज हरजीत सिंह की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सुई धागा से। आवाजें हैं पॉपॉन और रोनकिनी गुप्ता की, गीतकार हैं वरुण ग्रोवर और संगीत है अनु मलिक का।

रसरंग के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रॉक स्टार से। आवाजें हैं मोहित चौहान और सुजैन डे मेलो की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

रसरंग कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। आवाज है रिजी सिंह की, गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीत है अमाल मलिक का।

रसरंग कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म लुटेरा से। आवाज है मोनाली ठाकुर की, गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
1: मोहब्बत है ये जी, हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी, हुजूरी।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए रचना अजीज कैसी की। स्वर हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अगली रचना है सईद अब्दुल हलीम शाह की। कलाकार एक बार फिर से उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की आखिरी रचना है दिनेश ठाकुर की। कलाकार एक बार फिर से उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपने स्वर सुना उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म धड़कन से। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीतकार है समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दिल से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, गीतकार हैं समीर और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म खयामत से।
1: मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ?
0: आवाजें हैं कुमार
1: तुम्हें क्या
0: सानू
1: पड़ता है?
0: और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म राज से। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की, गीतकार
1: रात
0: हैं
1: का शिशिर
0: समीर
1: तुम्हारी इन
0: और
1: आंखों में,
0: संगीत है नदीम श्रवण का।
1: सारे जहां का दर्द समेट कर जब कुदरत से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये तो आंखें बना दी। बहुत दर्द बहुत कशिश है तुम्हारी इन आंखों में, दिल के फासले एहसास से कम होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहां भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान, और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र

0: में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आई एम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने

0: आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the 3rd T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight.

0: भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकेकार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
2: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील

0: नीला टनल जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वुसअत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया, जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मजबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज़ करने का अज़्म किया है।
1: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा ज़रई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की, ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया, जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मैपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता है और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है।

0: गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के पांचवें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने

0: वफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना दो रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकल व हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70,00,000 पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन।

नसीब वालों को ही किसी का ऐसा साथ मिलता है जिसकी मौजूदगी से हर लम्हा खास मिलता है, हर लम्हा खास मिलता है।

हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, हुस्न जब अपनी तमाम रौनक के साथ उतरता है, चांद भी उसकी चमक के आगे फीका सा लगता है।

इश्क की दास्तां छुपाए कहाँ छुपती है दोस्तों, पत्ता पत्ता शाख शाख उसका पता बता ही देती है।

सफर की थकान भी मुस्कुरा उठती है राहों में, सफर की थकान भी मुस्कुरा उठती है राहों में, जब कोई हम सफर बनकर दिल के साथ चलता है।

दिल अक्सर उन लम्हों की तलाश में भटकता है, दिल अक्सर उन लम्हों की तलाश में भटकता है जो गुजर तो जाते हैं मगर उम्र भर महकते हैं, उम्र भर महकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मित्र एजे अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल की स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय

0: की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर।
0: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हैं जो चल रही हैं।
1: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है, जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
0: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
1: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को।
0: जी,
1: पूरे राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए प्रतियोगिता कम ट्रायल था।
0: जी जी,
1: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते हैं, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
0: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? बैडमिंटन में।
1: बैडमिंटन में इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता है।
0: और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अपने खेल को निखार कर, प्रोग्रेस करके, उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
1: ये खेल तो जो मैंने आपका नाम बताया, ये सर तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं। साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है, और वो भी अच्छी चीज ये है कि यहाँ से बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना और सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम
0: हैं। स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
1: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारे बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है, तो उसमें वो लोग कर सकती हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है। पहले जिला स्तर पे अपने सिलेक्शन होगा।
0: अच्छा।
1: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उन 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं।
0: जी जी।
1: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी 2, 5, 7 वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज़ फ्री।
0: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है, क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा?
1: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है।

0: बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। लगभग इसमें हर एक में 20-20 बच्चे रहते हैं, लड़कियां जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं।
1: जी, छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
0: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है
1: वार्षिक?
0: वार्षिक, वो करके कोई भी जना कर सकता है 18 साल से कम वर्ष का। और
1: जी
0: अगर 18 साल से ऊपर है, वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे, तो उसमें 200 रुपये महीना उसको दे के
1: जी
0: यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
1: जो
0: अपने आप।
1: स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
1: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी हाल ही में कौन सी
0: नेशनल
1: टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
0: में अभी जूडो में भी गए
1: अच्छा।
0: हैं, हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की। वॉलीबॉल से भी 2-3 लड़कियां इस बार सेलेक्ट हुई थी।
1: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
0: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है, लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा
1: जी
0: लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
1: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
0: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना
1: जी
0: आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती,
1: जी जी
0: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करने वाला।
1: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
0: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है, जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया। एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है,
1: अच्छा।
0: किट है, जूते, ब्रोजेस, सब चीज़ उनको देके, और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते हैं।
1: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है,
1: जी
0: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा, तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं तो वो भी उस चीज के अलग से, उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए। गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है,
1: जी
0: एथलेटिक्स के लिए पतला, तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा,
1: जी हाँ,
0: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड
1: हाइट
0: ज्यादा है,
1: वगैरह भी देखी जाती
0: हाइट
1: होगी।
0: है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है,
1: जी
0: आपका शरीर होना चाहिए, पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए। बहुत सारे
1: सबसे
0: ऐसे
1: बड़ी ये
0: हैं,
1: चीज है कि
0: हाँ,
1: जुनून होना
0: जुनून
1: चाहिए,
0: होना चाहिए उसके
1: अगर
0: अंदर,
1: जोश
0: तो
1: नहीं है तो
0: फिर
1: गेम
0: कुछ
1: खेल
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: पाएगा
0: हाँ, फिर
1: वो।
0: उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें होंगी,
1: जी
0: धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
1: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
0: देखिए, कबड्डी में भी है यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है। ऐसे ही हमारे कुश्ती भी चलती है,
1: जी
0: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से, तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है, लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने 2 गेम तो पकड़ रखे हैं
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप
0: जी
1: उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं।
0: जी
1: स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में,
1: जी
0: क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम
1: जी
0: हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं।
1: जी
0: बस यही है कि माँ बाप जब भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो
1: तो
0: ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ
1: जी
0: पर आके खेले।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है?
0: कबड्डी है, क्रिकेट है, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा, इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी
0: इतना बड़ा है, जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जगह मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रोटर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्विमिंग पूल
1: अच्छा।
0: लर्निंग भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
1: अभी जहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी प्लेयर्स से, तो वहाँ देखा था मैंने एस्ट्रोटर्फ लगी हुई है, सारी सुविधाएं
0: जी, वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज है, अब जो मॉडर्न

0: जमाने में जिस तरह चलना जैसे एथलेटिक्स है
1: जी
0: सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है,
1: जी जी
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसको ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम धाबासेमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहां पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहां पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहां पर?
2: मैं 1 साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहां गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल
1: लेता, क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
1: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने, उन्हीं के साथ आए।
1: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
1: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जीत बिल्कुल लगता है कि अब जीत जाएंगे हम?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
1: अच्छा।
3: हाँ, ये बढ़िया टेक्निक है।
1: तो कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
3: हाँ, ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर का कोई वही नहीं रहता, बिना डरे खेलो।
1: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
1: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास?
3: सर न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे, 3 घंटे शाम तक।
1: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
3: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना सर, इसको डाले खा सकते हैं जब खेलना है तो, इतना तो
1: जी, जी।
3: सुबह डाइट रहता है।
1: और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
3: हाँ, ये सब तो अच्छा रहता है
1: ना, और मेंटली भी अच्छा,
3: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
1: जी जी। आपका क्या नाम है?
4: सौरभ कुमार।
1: आप कब से आ रहे हैं?
4: 2 साल हो गए।
1: 2 साल आपको हो गया?
4: यस।
1: और कहाँ के रहने वाले हैं?
4: अयोध्या जिला।
1: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे,
4: यस,
1: तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे,
4: यस,
1: तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
4: ये सीखा सर और मेहनत करे और अच्छा खेले। हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
1: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
4: यस।
1: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
5: सत्यम पाल।
1: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
5: जी।
1: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
5: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: हम लखनऊ के हैं।
1: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं?
5: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
1: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
5: उनसे मिलकर अच्छा लगा और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रेटजी से खेलते हैं।
1: वैसे ब्रीथिंग के लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
5: हाँ,
1: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
5: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
1: आपका क्या शुभ नाम है?
6: कोमल यादव।
1: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
6: हॉस्टल से।
1: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
6: नहीं, बनारस।
1: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो आप सीख रही हैं?
6: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
1: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
6: 200, 400।
1: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
6: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
1: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
7: तेजस्वी निषाद।
1: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
7: 3 साल होने।
1: लोकल यही की रहने वाली है कहीं बाहर से?
7: प्रयागराज
1: से। यहाँ हॉस्टल में रह के
7: साल हुआ है।
1: तो आप कहाँ कहाँ अब तक खेलने गई हैं?
7: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ था।
1: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी।
7: हाँ।
1: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?

0: पासिंग से खेल रहे थे
1: जी।
0: अच्छा, मिला मिला।
1: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
0: नहीं
1: है ना। तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना, ऐसा क्या था हॉकी में?
0: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
1: जी जी, जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
0: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था इसलिए।
1: जी जी, तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती
0: हैं? सविता पुनिया।
1: आपका क्या शुभ नाम?
2: सर शिवम।
1: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
2: सर यहीं बगल से, 2-3 किलोमीटर।
1: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए हैं?
2: जी सर।
1: कहाँ गए हैं?
2: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में, वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
1: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे?
2: जी सर।
1: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच कर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते हैं?
2: जी सर।
1: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को, नई चीजें मिलती हैं?
2: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: आपका शुभ नाम?
3: चंचल मौर्य।
1: चंचल मौर्य, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
3: जी मैं मलिकपुर गांव से आती हूँ, और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ। तो
1: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
3: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है गाँव से ही है, तो मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो उसको देख के।
1: आप कब से खेल रही है?
3: मुझे 4 साल हो गए हैं।
1: 4 साल हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी?
3: जी नेशनल खेला है।
1: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
3: आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ था चैंपियनशिप 2025 में।
1: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
3: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
1: मेन चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर।
3: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
1: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
3: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
1: आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
3: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अविश।
1: आपका शुभ नाम?
4: नीलाक्षी।
1: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने?
4: सर हम ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
1: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको स्टेडियम मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
4: सर मैं बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में
1: जी। इसके अलावा जब कभी आप खाली होती है तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं उनको अभी आप देखती होंगी?
4: सर फोन पे।
1: तो आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
4: सविता पुनिया।
1: चलिए, आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला

लग गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये चौथी भिड़ंत थी। इसके पहले तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और चौथी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने सातवीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए। ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से सातवीं बार सातवें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल शीर्ष 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ता जाएगा। निशानेबाजी। होनहार निशानेबाज जतिन ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। जतिन ने कड़ी मेहनत की, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किए। खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया।
निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच

मुकाबला गोल रहित रहा। इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र एजे अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम

0: हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हारकर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र एजे अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मन
3: का रेडियो बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है शहनाई वादन। कलाकार हैं विष्णु प्रसन्ना और साथी राग है पुरिया कल्याण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे विष्णु प्रसन्ना और साथी। राग था पुरिया कल्याण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का

दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिश्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिश्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।